जिसे मैं सुनना चाहता हूं।

जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है, वो जो भी है

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.

एक इरेजर या अंडू बटन तो होना ही चाहिए था ना। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप सुन रहे हो आपकी सिंपली आफरीन को, और एक सिंपल सा ख्याल कुछ ऐसा आया था आज सुबह दैट लाइफ इज रियली स्ट्रेंज। व्हाट्सएप पर अगर हम एक गलत मैसेज टाइप कर देते हैं तो डिलीट फॉर एवरीवन हो जाता है, लेकिन रियल लाइफ में अगर कुछ गलत कह दिया तो फिर ये डिलीट फॉर ऑल ऑप्शन या अंडू बटन या फिर एक इरेजर होता नहीं है ना ये सब करने के लिए। यार आज का थॉट कुछ ऐसा था दैट लाइफ इज द आर्ट ऑफ ड्रॉइंग विदाउट एन इरेजर। अब सिंपल शब्दों में अगर बता दूं दैट जो बोल दिया वो वापस नहीं ले सकते हैं, और जो कर दिया उसको हम इरेजर से मिटा नहीं सकते हैं। लेकिन चिल यार, लाइफ इज नॉट एन आर्ट कॉम्पिटिशन। ये वो स्केचबुक है जिसमें कभी डूडल बन जाता है तो कभी मास्टरपीस। ऑल इन ऑल ये कहना चाहूंगी कि यार कभी कभी गलतियां भी इंटरेस्टिंग होती है एंड इट हेल्प्स यू टेक वाइज डिसीजंस। सो यार अगली बार से जब भी एटलीस्ट किसी को कहते हो ना, कभी गुस्से में कुछ कह देते हो ना, तभी एटलीस्ट 2 से 4 बार सोच लीजिए। या फिर वो 1-2-3 वाला जो ट्रिक हमें बचपन में सिखाया जाता था कि यार गिनती कर लो गुस्सा ठंडा हो जाता है, तो यार जब भी कोई किसी भी कही हुई बात है ना दिल से निकलती है वापस नहीं ले सकते, दिल तक पहुँच जाती है। मिर्ची पर आप सुन रहे हो आफरीन को, दिल से कही हुई बातें इस सुबह में आपके दिल तक पहुंची है। तो शो की शुरुआत कर लेते हैं राइट हियर ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: Milci. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello?
2: Hello? Hello?
1: भैया आवाज़ साफ नहीं आ रही, कम आ रही आवाज़।
2: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
1: हाँ जी।
2: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
1: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
2: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर, रमेश इसे बंद कर दे। यार आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
1: मैं
2: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन, यार इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
1: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
2: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
1: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
2: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
1: तो चोरी करने के लिए
2: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
1: यहाँ पे मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फंसवाएगा।
2: मेरी बात सुन,
1: माँ का तू मुझे मरवाएगा। मुझे फोन कर दिया बहन,
2: मेरी बात सुन।
1: हेलो
2: यार, कमाल है आप तो, मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
3: सर सर सर सर, मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
1: कहाँ से बोल रहे हैं भैया?
3: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
2: अब ठीक है, मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पगा।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए.
0: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग.
1: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माई शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार.

Well, 25 million services in 6 months. These are all huge numbers, hai na? Lekin kis cheez ke hai ye? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. और ये जो बड़े आंकड़े मैंने सुनाया आपको 25 मिलियन एंड ऑल, ये हमारे हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं. यस, हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन के लेटेस्ट नंबर्स आर आउट एंड इन जस्ट फर्स्ट सिक्स मंथ्स ऑफ 2026 HMC डिलीवर्ड 25 मिलियन हेल्थ केयर सर्विसेज. नाउ दैट्स अ वोपिंग फिगर. वेल, दैट इंक्लूड्स अराउंड 1.5 मिलियन आउट पेशेंट अपॉइंटमेंट्स, 40,000 सर्जरीज, 700,000 एमरजेंसी cases and even 50,000 home visits. But mere liye sabse interesting number ye hai. The average waiting time for his first specialist appointment jo pehle 58 days tha, ab wo seedha 16 days par aa gaya hai. Aur HMC ka eventual target hai ab isko 14 days karna. And they have done this through things like evening clinics, two shifts

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

0: देखिए, ये मीठे मीठे गाने से ज्यादा चाशनी भरे आपके ना सुबह सुबह के मैसेजेस होते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड गुड मॉर्निंग। तो याद करने का तरीका कोई आपसे सीखे, जैसे यहाँ पर सुबह होते ही और मेरे गुड मॉर्निंग कहते ही इतने सारे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आ जाते हैं ऑन माय व्हाट्सएप। फिलहाल तो गुड मॉर्निंग आरजी आफरीन, थैंक्स फॉर वेकिंग अस ऑल अप विद दैट अमेजिंग प्लेलिस्ट एंड स्माइल। प्लेलिस्ट तो समझ में आती है, स्माइल कहाँ से। But thank you so much and very good morning to you as well, Imran. Apart from that, I have a good morning message from Alishan. I also have a good morning message from Saifullah. Aur ye kaun hai? Nazeen ji kehti hai good morning aur Harpal Sandhu ji kehte hai good morning. And yes, agar aap bhi kehna chahte hai very good morning, then it is 5001896 my WhatsApp number. Yahan par aakar aap good morning, good morning keh sakte ho. Aur aage badhne se pehle zara weather ka haal chal dekh le.
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेल, वेदर ये कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर इज 43 डिग्री सेल्सियस एज मिनिमम इज एट 33 डिग्री सेल्सियस। महसूस थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है आज, इनफैक्ट ह्यूमिडिटी आज थोड़ी हल्की सी ज्यादा भी है कल से, 68% पर है। ये जो है ना, ये आखिर की थोड़ी सी ऐसी गर्मी होती है कि बस जाते जाते गर्मी अपना चरम दिखा कर जाती है कि चलो दे दिया, कर लिया, हो गया मेरा काम, और फिर उसके बाद में कुछ महीनों के लिए गायब हो जाती है और वो होने वाली है, जल्दी होने वाली है। मीनवाइल यहाँ पर ठंडे ठंडे मस्त मस्त गाने सुनेंगे हम मीट ब्रदर्स एंड मुरली ठाकुर की आवाज में। बागी मूवी का ये गाना ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
3: दाल चावल और अचार ना हो आम का, पानी आ गई। स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की जरूरत है। मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची। यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की।
2: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी लापता लेडीज और मैं हूँ यहाँ पर आपके वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक और गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग की बातें हमारी चल ही रही थी थोड़ी देर पहले भी और बहुत सारे लोगों ने गुड मॉर्निंग भेजा लेकिन आई थिंक सो दिस हैज टू बी द बेस्ट गुड मॉर्निंग मैसेज फॉर माय डे और वो है एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बहुत सारे बच्चों का
1: गुड मॉर्निंग मिर्ची इज हॉट
0: बच्चा पार्टी सब एक साथ निकले हैं स्कूल के लिए हाउ कूल यार तुम लोग इतने सुबह सुबह फ्रेश साउंड कर रहे हो बहुत ही ज्यादा आई रिमेम्बर माई स्कूल डेज यार सुबह मैं इतनी मुश्किल से मम्मी स्कूल के लिए उठाती थी और फिर वो थोड़ा बहुत टाइम मिलता था लास्ट मोमेंट तक सोने का आई यूज टू टेक अ नैप भले ही वो दो मिनट की क्यों ना हो एंड आई जस्ट लव द एनर्जी इन द मॉर्निंग एंड इनफैक्ट इफ आई एम राइट कोई स्कूल्स के एग्जाम्स भी इनफैक्ट स्टार्ट हो गए हैं या होने वाले हैं जल्दी फॉर ऑल द इंडियन स्कूल्स आउट देयर एंड किड्स इफ यू आर लिसनिंग टू मी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम और आजकल के बच्चों का ना जलवा होता है मेरे ख्याल से एक अलग ही किस्म का कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई देख लेंगे कर लेंगे हो जाएगा ऐसी कुछ है आप भी सो यार रॉकेट या आई थिंक सो यू गाइज आर द कूलेस्ट तो चलिए तुम लोगों के लिए एक गाना लेकिन हमारे 90s के जमाने का अब जो आपको पसंद आएगा आई एम सो श्योर अबाउट इट And this is for all the kids. Exam जो है ना ठीक है आते रहेंगे जो भी है टेक इट इजी ए आर रहमान का ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची फॉर ऑल द किड्स आउट देयर माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताऊं सर, बहुत दुविधा है, समझ नहीं आ रहा प्यार चूज करूं या करियर।
1: अरे सिंपल है रे, तुम ना वो चूज करो जिससे तुम्हारा खर्चा निकले।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन जुड़ गई है आपके साथ एंड अगला गाना एश किंग और स्लिंटन क्लिंटन से रे जो की आवाज में राइट यू मेकिंग योर मॉर्निंग इवन मोर गुडी गुडी सी फीलिंग आ रही है बिकॉज इट इज अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी बॉडीगार्ड आई लव यू टाटा बस इसी के साथ मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है एग्जैक्टली सुबह के 7 बजे की तरफ एंड आई एम विशिंग यू अ वेरी वेरी गुड डे राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर Qatar's largest private medical center.

यू हैव टू नो इट इज अ 90s सॉन्ग जब ट्रम्पेट, ड्रम्स और इतने सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं लता जी और उदित नारायण की आवाज में. दिस लवली ट्रैक मेकिंग योर डे इवन ब्राइटर ऑन मिर्ची.

लता जी और उदित नारायण की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफरीन को आप सुन रहे हो ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगली जो इन्फॉर्मेशन है उनके लिए है जो अगले साल नियत रखते हैं, इंटेंशन रखते हैं हज के लिए। सो यस, कतर्स मिनिस्ट्री ऑफ एंडोमेंट्स एंड इस्लामिक अफेयर्स हैज अनाउंस दैट हज रजिस्ट्रेशन जो है वो अगले साल के लिए इस महीने से ओपन होने वाला है। 20 सितंबर इज द डेट एंड इट विल कंटिन्यू अंटिल 20 अक्टूबर टू द ऑफिशियल हज वेबसाइट। कतर का इस साल का कोटा है 4,400 पिलग्रिम्स। अब एलिजिबिलिटी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कतरी सिटीजन्स के लिए दे नीड टू बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड एंड कैन ऐड अप टू 3 कंपेनियंस। लेकिन रेसिडेंट्स और GCC सिटीजन्स जो है इनके लिए इस तरह से है कि जो एप्लीकेंट है वो 45 ईयर्स एंड अबव होने चाहिए और उन्होंने पहले कभी भी हज परफॉर्म नहीं किया होना चाहिए। और ये जो रेसिडेंट्स एप्लीकेंट है दे नीड एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस रेसिडेंसी इन कतर एंड दे कैन ऐड वन कंपेनियन। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है दैट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इज द फर्स्ट स्टेप। इट कैन बी ऑब्टेन थ्रू द हेल्थ सेंटर्स अक्रॉस कतर विद द रिजल्ट लिंक्ड इलेक्ट्रॉनिकली टू द हज सिस्टम। अब ये रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने बताया है 20 अक्टूबर को बंद होने वाली है एंड अप्रूवल्स आर एक्सपेक्टेड वाया SMS फ्रॉम द एंड ऑफ अक्टूबर। फॉर एनी क्वेरीज द हज एंड उमरा अफेयर्स हॉटलाइन इज 132। आई रिपीट, अगर आपको कोई भी अपनी तरफ से और क्वेरीज है, क्वेश्चंस है इससे जुड़े हुए तो 132 इज द हॉटलाइन नंबर। मैं हूं आफरीन आपके साथ। अगर हज का इरादा आप में से किसी ने कर ले ही लिया है तो डेट जरूर सेव कर लीजिए, एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लीजिए और जो पेपर वर्क है उसे लास्ट मिनट पर बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और अगर आपका कहीं अप्रूव होता है और आप जाते हो तो मुझे यानी आफरीन को दुआओं में जरूर याद रखिएगा। माइक से दिल तक आफरीन है राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो
4: हेलो बेटा नवनीत,
3: आप कौन?
4: पापा कहाँ हैं?
3: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
4: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
3: लेकिन आपको काम क्या है?
4: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
3: पापा ने कहा था?
4: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ तेरे को।
3: क्या हुआ अंकल?
4: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना, मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
3: अब मुझे क्यों डांट?
4: चुप कर।
3: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? मतलब मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
4: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा था तूने?
3: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
4: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
3: लेकिन बुरी क्या
4: लगी? अंकल कल भी आखो एक मारूंगा।
3: बदतमीजी क्या करी
4: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
3: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
4: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
3: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
4: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
3: क्या बोलूं?
5: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
3: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
4: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
6: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए, मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
8: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
9: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
10: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
11: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Strawberry Banana Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good. Pizza partner Papa John's. Qatar, are you ready for the new pan pizza from Papa John's? Crispy garlic parmesan crust, Italian seasoning, 6 cheese blend and cheese edge to edge. The new standard of pan in Qatar at Papa John's. Order now.
12: Healthcare partner Kim's Health Medical Center, a multi-speciality medical center located in Al Wakra, Al Meshaf and Barwa City. Kim

शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स ऑन 89.6 मिर्ची वन। और देखिए हर जनरेशन के साथ हर चीज़ें बदलती हैं। अब जैसे पढ़ाई के बारे में बात करें, एजुकेशन हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स वेरी ड्रास्टिकली। अब पहले तो भाई एक किताब होती थी, उसमें हम लिखते थे, उसके बाद में अब बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी भी किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया गया है, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द किड्स एंड इट्स फेनोमिनल। लेकिन अब बात करते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी आगे चल गई है, कि स्कूल के हर रोज के रूटीन में किस तरह से इसे इन्वॉल्व किया गया है, इंक्लूड किया गया है, जिसे बात करते हैं फॉर द 2026-27 एकेडमिक ईयर। ये न्यू ईयर अ पाम रिकग्निशन सिस्टम कॉल्ड हुदूरी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अक्रॉस गवर्नमेंट स्कूल्स एंड स्कूल बसेस। अब दिस इज एब्सोल्युटली कॉन्टैक्टलेस। स्टूडेंट्स यूजिंग प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन विल रजिस्टर ट्वाइस अ डे, व्हाइल स्टूडेंट्स यूजिंग स्कूल बसेस विल रजिस्टर एट 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर जर्नी, हेल्पिंग स्कूल्स एंड पेरेंट्स ट्रैक देयर मूवमेंट मोर एक्यूरेटली। अब देखिए इट्स नो लॉन्गर कि हम पहले स्कूल में टीचर्स हमें एक एक रजिस्टर से नाम पुकारती थी, याद है, आफरीन प्रेजेंट मैम, एंड दिस इज हाउ इट यूज्ड टू बी। बट नाउ बच्चे स्कूल में जाते हैं, अपना बस पाम जो है वो सिस्टम के सामने ऐसे रखेंगे, एंड दैट्स हाउ देयर अटेंडेंस इज मार्क्ड। वैसे बता दो, दिस इज फिलहाल फॉर द गवर्नमेंट स्कूल्स आउट देयर, एंड द सिस्टम इज कॉल्ड हुदूरी, इट्स HODORII, होप आई हैव प्रोनंसिएटेड इट राइटली। लेकिन आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से इस तरह से और भी स्कूल्स में ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, एंड दैट्स हाउ टेक्नोलॉजी को किस तरह से अपने डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके उसे और कन्वीनियंट और कंफर्टेबल बनाया जाए, दैट इज द एक्चुअल बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। अरिजीत सिंह की आवाज में अगले गाने की तरफ आगे बढ़ते हुए मैं हूँ आफरीन, माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
0: Ready?
5: Ready!
0: To learn?
5: Yes!
0: To play?
5: Absolutely!
0: To grow?
5: With Maserati!
6: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
5: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs!
6: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
7: The show was absolutely amazing.
8: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: The mentalist Suhani Shah.

0: वेल, अरिजीत सिंह की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूँ आफरीन आपके साथ। एंड यस, वक्त हो चला है कि हम यहाँ पर लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट खेले, और आज का सीन हैज टू बी लिटिल थोड़ा सा पेचीदा फॉर यू। लेकर आई हूँ मैं आपके लिए मंडे के लिए एकदम खतरनाक सीन।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट।
2: देखो असली में बहुत चर्बी चढ़ी ली है, मार डालूंगा तेरे को मैं।
3: क्यों, विलेन है तू?
2: विलेन? अबे खड़े खड़े तमाशा हो जाएगा।
3: क्यों, मदारी है तू?
2: मदारी? मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है।
3: क्यों, विधवा है तू?
2: विधवा?
0: ओके, बताइए कौन सी मूवी का ये सीन था। वैसे मैंने कहा था कि देखो इट्स नॉट गोना बिकम रियल, गेट रियली क्या कहते हैं इजी ईयर। 5000196 इज माय व्हाट्सएप नंबर, फटाफट से यहाँ पर बताइए। और जिन्होंने मैसेज किया है ना यार, तुसी ग्रेट हो। जैसे सुलेमान का मैसेज आ गया है ऑलरेडी, एंड देन आई हैव कुमेल का मैसेज हियर, एंड देन समवन इज मैसेजिंग हियर। अपना नाम जरूर लिख लिया करो यार। आवाज तो आपने पहचान ही ली थी, अक्षय कुमार की आवाज है, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग दैट। लेकिन यस, मूवी इज नॉट सो डैम पॉपुलर, लेकिन ये डायलॉग कहीं ना इट इज फनी एंड पॉपुलर। ठीक है, चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप लोग के मैसेजेस के यहाँ पर मैं जवाब देती हूँ, और आप जो है मोहित चौहान और नेहा भासिन की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना एंजॉय कीजिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कुमार शानू, आपके हिसाब से आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे?
3: मेरा कॉलिग के बारे में मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, मैं ना बोलना चाहता हूँ। हमारे जो कॉलिग्स थे, दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स, अलग अलग अपना पहचान बनाया, जो आज के सिंगरों में है नहीं, पहचान है नहीं किसी का, एक ही टाइप का सिंगर आपको 6 मिल जाएगा।
2: वेयर इज द लाई कुमार शानू, वेयर इज द लाई? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
5: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो, एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: The Mentalist Suhani Shah.

0: ये था गुची, संग बाय अरूप खान फीचरिंग रियाज अली, कंपोज्ड बाय प्रतिंदर, लिरिक्स बाय कप्तान एंड म्यूजिक बाय मिक्स सिंह। फुल ऑन मिर्ची बैंगर, इट्स हॉट।
1: वेल देखो, गाना तो अरूप खान ने शायद गाया होगा ये, लेकिन ये गाना जब भी आता है ना, फॉर सम रीजन मुझे रवि किशन ही ध्यान में आते हैं, बिकॉज माय इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम में ना इतने सारे उनके वीडियोस आए ना ऑफ हिम परफॉर्मिंग ऑन दिस सॉन्ग, एंड दैट्स क्वाइट एंटरटेनिंग आई वुड से, एंड ऑल्सो हिलेरियस एट द सेम टाइम। देखो मैनो भी गुच्चियां दे लोड नहीं है, मेरे को तो बस चाहिए तो वो है आपके मैसेजेस यहाँ पर, एंड वो तो मुझे मिल गए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्टरनून है राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड इट इज टाइम जहाँ पर लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट हम खेल रहे थे और ऐसा सवाल पूछा था जिसका जवाब ना अगर मैं आपकी जगह पर रहती और सुनती ना तो मुझे तो नहीं आता बॉस, जो है वो है। क्या है, लेट्स हियर इट नाउ।
2: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट
3: मेरे को असली में बहुत चर्बी चढ़े ले गया, मार डालूंगा तेरे को मैं।
4: क्यों, विलन है तू?
3: विलन? अबे खड़े खड़े तमाशा हो जाएगा।
4: क्यों, मदारी है तू?
3: मदारी? मैं बोल रहा हूँ मैंने अपने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है।
4: क्यों, विधवा है तू?
1: ओके, एंड इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग इसके आगे द मूवी, ना सर ना हाथ ना पैर होता है ऐसे कई सारे बॉलीवुड मूवीज में होते हैं, लेकिन कभी कभार उसके कुछ डायलॉग्स याद रह जाते हैं, उसके कुछ सीन्स याद रह जाते हैं। वन सच मूवी जिसका नाम जो शायद इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी, कौन सी मूवी है आप खुद सुन लीजिए, चलिए फ्रॉम आर लिसनर।
5: Hello. Good morning, Afreen. I hope you're doing
1: very
5: well.
1: Good morning.
5: Good morning to all the listeners.
1: Okay.
5: This
1: good morning.
5: Movie is Entertainment by actor Akshay Kumar. Thank you so much. Happy listening.
1: थैंक यू सो मच कुमार, दैट इज द राइट आंसर। और बस कुमार के जैसे ही यहाँ पर सही जवाब देने वाले हैं अहमद मोहम्मद, देन आई ऑल्सो हैव योर सैयद सलमान जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, देन आई ऑल्सो हैव हू इज़ दिस खुमैल एंड सुलेमान, और बहुत सारे गलत जवाब भी आए हैं आज, जैसे किसी ने हाउसफुल 2, हाउसफुल 5, वेलकम टू द जंगल, इस तरह से मैसेजेस किए हैं। बट कोई बात नहीं, बिकॉज आज का सवाल ना एक्चुअली वॉज नॉट सो ईजी पीजी। तो जहाँ हमने अक्षय कुमार की मूवी एंटरटेनमेंट का ये डायलॉग सुना जिसमें तमन्ना भाटिया भी थी एंड मिथुन चक्रवर्ती भी थे, और वैसे मूवी बहुत ज्यादा डिजास्टर थी वैसे बता दो, लेकिन कोई ना, हम अक्षय का ओजी खिलाड़ी से गाना सुनेंगे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। दिस इज आवर रियल अक्षय, है ना? जॉय टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: हेलो सर, मेरी फोटो में ना कभी भी स्माइल अच्छी नहीं आती, क्या करूं?
1: बेबी डॉल, स्माइल फोटो में नहीं होटो पे अच्छी लगती है।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
2: Mirchi One. It's hot.
3: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आप सुन रहे हो आफरीन को और आपके मॉर्निंग ड्राइव का साथी बनने जा रहे हैं अब लकी अली. यस, लकी अली की आवाज में अगला गाना. आई एम गोना मेक योर ड्राइव इवन मोर स्मूदर राइट हियर ऑन मिर्ची. और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 8 बजे की तरफ. सुनते रहेगा मिर्ची. इट्स हॉट.
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

0: गोल्ड अपडेट।
1: बिल देखो, मंडे हो या संडे, मार्केट पर नजर रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गोल्ड। सो आज के क्विक चेक ऑन पैम्प गोल्ड रेट्स। 1 ग्राम इज फॉर 590 कतरी रियाल, वेयर एज 5 ग्राम्स इज फॉर 2766 कतरी रियाल, 10 ग्राम्स इज फॉर 5463 कतरी रियाल, 1 ounce इज फॉर 16889 कतरी रियाल एंड 10 तोला इज फॉर 62719 कतरी रियाल। मैं हूँ आफरीन आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, इट्स हॉट।
2: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAMP's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAMP gold bars
3: and earn Qatar Airways Avios today.
2: Visit our branches or download the app now.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La vispa, la murga. Mirchi, murga.
1: Hello.
2: Good evening, Mr. Srivastav. मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से. How are you?
1: थैंक यू.
2: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है.
1: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा. हाँ.
2: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था. अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें. पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे. यू नो,
1: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो. आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए. आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे.
1: मतलब ये गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो,
1: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा, आओ मिलो शिलो शालो. एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है. आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए. राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह.
1: आओ मिलो
2: शिलो शालो,
1: शालो
2: कच्चा धागा,
1: कच्चा धागा
2: रेस लगा लो,
1: रेस लगा लो,
2: दस पत्ते तोड़े,
1: दस पत्ते तोड़े,
2: एक पत्ता कच्चा,
1: एक पत्ता कच्चा.
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा आप, तेज़ बोलेंगे. दस पत्ते तोड़े
1: तोड़े,
2: या मिस्टर श्रीवास्तव दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
1: दस दस दस पत्ते तोड़े,
2: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा.
1: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा.
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
1: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
1: श्रीवास्तव
2: बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है.
1: यार ये कोई सुनेगा
2: सर? ये सर ये सब सुन चुके हैं. अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर्स गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
4: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoonu. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah, live.

सो वेल इट्स दैट टाइम ऑफ द डे जहां आपका फायदा होता है. Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो Simply Afreen को right here on Mirchi Mornings and it's time के हम अब सुन ले. हाँ जी, आई पे के एक्सचेंज रेट ये कहते हैं दैट एक खतरे रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 25.88, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.16, बांग्लादेशी टाका ऑन द अदर साइड इज एट 33.67, और एक खतरे रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं श्रीलंकन रुपीज दैट इज एग्जैक्टली 90.06, एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट एक खतरे रियाल के बदले आपको मैं नेपाली रुपीज मिल रहे हैं 41.33. ये थी आज के एक्सचेंज रेट. घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां एंड खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला 89.6 मिर्ची 1 पर. माइक से दिल तक आफ्टरीन के साथ बने रहिएगा. इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
0: रेडी
5: रेडी
0: टू लर्न
5: यस
0: टू प्ले
5: एब्सोल्युटली
0: टू ग्रो
5: विद मेज़राती।
6: The school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
5: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
6: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
7: The show was absolutely amazing.
8: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

That is नीना श्रीधर की आवाज में किस्मत कनेक्शन का ये गाना और शाहिद कपूर और विद्या बालन थे ये गाने में, याद है आपको? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है आपके साथ राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स और दिस इज अ टाइम यार मस्ती मजाक गेम शेम ये सब कुछ चलते रहता है हमारे, नहीं शेम नहीं गेम होता है सिर्फ तो वेल नाउ इज अ टाइम जहां पर मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स अब खुलेगा मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स और आज एक ऐसे गाने के मैं छोटा सा एक स्निप लेकर आई हूँ, क्लिप लेकर आई हूँ जो कोई मूवी से नहीं है लेकिन आप पहचान जाओगे। रुक जाओ, पहले गाना सुन लो और फिर मुझे बताओ कि ये कहाँ से, ये कहाँ है ये।

बन के बिगड़ती है, आगे नहीं बोलूंगी आपने बताना है। ये हमारे टाइम का ना एक सीरियल का टाइटल सॉन्ग था, एंड आई थिंक सो वी ऑल रिमेम्बर दिस लिरिक्स ना, है ना, कौन सा है बताओ फिर मुझे। 5001896 इज माई नंबर राइट हियर, फटाफट से बताइए। ये जो मैंने आपको गाना सुनाया है ये वाला, लो अंगारे है, बताइए मुझे ये कौन सा टीवी सीरियल का गाना है। राइट हियर 5001896 इज माई व्हाट्सएप नंबर, डू यू नो द आंसर। ऐसा दिलजीत पाजी पूछ रहे अपने अगले गाने में, राइट रन विच इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शंकर महादेवन,
3: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग, तो हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
4: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज्ड जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, टू पुट दिस सनस्क्रीन, नॉट सनस्क्रीन द वन व्हिच यू यूज फॉर द स्पॉटिंग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट सनस्क्रीन थिंग इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी.
2: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
7: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

सुदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज में ये जबरदस्त सा गाना लव के लिए साला कुछ भी करेगा और ये बिल्कुल सही बात है ना बस। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफ्रीन का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड हम यहाँ पर एक गेम खेल रहे थे राइट जिसका नाम है मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स से। आज मैंने एक धुन सुनाई, एक ऐसी टीवी सीरियल की धुन बिल्कुल रैंडमली बीच में से सुनाई है मैंने एंड आई थिंक सो ये जो गाना ही है ना ये इतना कैची गाना था और सीरियल उससे भी ज्यादा मजेदार था। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, लेट्स लिसन टू द ट्रैक फर्स्ट।

0: Why? What a serial this was. My God, इतना hilarious था, इतना मजे का था. My favorite by far. अब इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन कौन सा सीरियल ये तो सुनाओ. हेलो.
1: हाय आफरीन. हाय. गुड मॉर्निंग.
0: गुड मॉर्निंग.
1: दिस इज प्रिंसन हियर.
0: हां प्रिंसन.
1: द सिटकॉम इज साराभाई वर्सेस साराभाई, वन ऑफ माय फेवरेट शोस.
0: Okay, that is
1: have a lovely time.
0: Absolutely right. Usha Uttab ji ka gaya hua ye gana, Sara Bhai versus Sara Bhai. What a serial, na? Rasesh, Indravadhan, Maya Sara Bhai. You remember these characters, by the way? वैसे Sara Bhai के बारे में अगर बात करें ना, तो recently I think so एक साल ही हुआ है Satisha ji जो Indravadhan का किरदार कर रहे थे Sara Bhai में, and he's played so many roles in iconic roles मैं कह सकती हूँ Bollywood movies में. उनका देहांत हुआ था एंड आई जस्ट रिमेंबर सतीशा ओनली एज इंद्रवर्धन, मेनली एज इंद्रवर्धन. वेल, मैं हूँ आफरीन आपके साथ, और ऐसे ही जब 90s और 2000 की बातें याद आती है ना, इट रियली टेक्स अस इनटू दैट टाइम फॉर सम मोमेंट, है ना. एंड यू स्टे देयर, डोंट गो. 90s में रहना है, अभी रहो. अर्ली 2000 के एरा का ही एक गाना सुना रही हो. यू वांट टू रिमेंबर ऑल योर फ्रेंड्स विद दिस सॉन्ग. कॉलेज की यादें, स्कूल की यादें, है ना. शंकर महादेवन, शान के आवाज में ये गाना एंजॉय कीजिएगा ऑन मिर्ची.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: मेरे बेटे का वेकेशन है और मैं उसे कब से पूछ रहा हूँ कि उसे क्या करना है। स्विमिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस जैसे ऑप्शंस भी दिए उसे, पर वो जवाब ही नहीं दे रहा। क्या करूँ?
1: अरे सिंपल है ना, तू स्विमिंग वगैरह छोड़ दे, उसे पहले जवाब देना सिखा, समझे?
2: I'm joking, mama.

0: Mirchi Mornings.
1: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6
1: Mirchi One. It's hot.
3: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन का साथ जुड़ गया है आपके साथ सचिन टंडन की आवाज में. ये अगला गाना कमिंग योर वे, लेकिन उससे पहले मिर्ची घड़ी का इशारा एग्जैक्टली सुबह के 9 बजे की तरफ.
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

0: Well, that is Saj Bhatt और सुभोष शर्मा की आवाज में ये गाना Right Here on Mirchi. मैं हूँ आफरीन आपके साथ. और बॉलीवुड में इस वक्त पर एक तरफ जॉम्बीज आ रहे हैं तो दूसरी तरफ गांधी जी, और बीच में 2000 का नॉस्टैल्जिया भी कमबैक कर रहा है.
1: मिर्ची स्पॉट बॉय, बॉलीवुड की अंदर की खबर. आफरीन मैडम, पता है क्या?
0: देखो मुझे तो पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि रणवीर सिंह की नई मूवी जो आ रही है ना, उसमें उनका जो लुक होने वाला है वो लीक हो चुका है. वेल, अपकमिंग मूवी जॉम्बी एक्शन फिल्म है. प्रलय की शूटिंग मुंबई में चल रही है और सेट से रणवीर का वो रगेड लॉन्ग हेयर लुक लीक होकर ऑलरेडी इंटरनेट पर घूम रहा है. फिल्म में उनके साथ में कल्याणी प्रियादर्शन भी नजर आएंगी. मीनवाइल मनोज बाजपेयी के बारे में बात करते हैं जो महात्मा गांधी का किरदार निभाने वाले हैं सुधीर मिश्रा की नेक्स्ट फिल्म में, जिसकी शूटिंग ऑलरेडी लखनऊ में शुरू हो चुकी है. एंड मनोज वाजपेयी गांधी जी का रोल करते हुए, नाउ दैट्स एक्चुअली अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच आई वुड वांट टू सी. अब बात करते हैं हमारे नॉस्टैल्जिया डिपार्टमेंट के बारे में, और वहां से खबर ऐसी है दैट ऑलमोस्ट 19 इयर्स लेटर हे बेबी का सीक्वल इज ऑफिशियली हैपनिंग. एंड दिस टाइम इट्स हैपनिंग अगेन जहां ये पहले शूट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में. यस, वहीं पर ये होने वाला है. एंड वेल, व्हेन वी टॉक अबाउट हे बेबी, the names which come to our mind of course has to be Akshay Kumar, Ritesh Deshmukh, Fardeen Khan and that cute little girl which was on the movie. But jahan sequel ki baat aayi hai, final cast kya hai uske liye na aapko thoda intezar karna padega, aur Afreen andar apni jo andar ki baat hai na, andar ki khabar se pata laga kar aapko bata hi degi. Meanwhile jahan baby ki baat chidi hai to chaliye ho jaye Neeraj Sridhar Raman Parvez Khader ki awaaz mein Hey Baby का टाइटल ट्रैक राइट रन विच इट्स हॉट.

0: Merge! Escabana, buscabana, sacabana, rabana! Burga, burga! Na vida la burga! Merge, burga!
1: Hello?
2: Hello?
1: कौन?
2: हेलो,
1: हाँ बोलो, कौन?
2: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
1: हाँ बोल, कौन रहा है?
2: बोल, कौन रहे हो? कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की। नीचे से बोल रहा हूँ, आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
1: बोल, कौन रहे हो?
2: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
1: हाँ बोला था।
2: ओ भैया, मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने।
1: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर?
2: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
1: हाँ बोलो।
2: ओए यार, आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर। ओ भैया, मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने।
1: कौन बोल रहा है? कहाँ घुस गए यार?
2: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
1: हाँ हाँ बोला था। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ।
2: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। ओए यार, आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर।
1: कब आया था, कब घुसा अंदर?
2: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
1: तो कहाँ से रहा है? नहीं हो गया है?
2: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
1: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
2: ऑफिस क्यों गए? सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
1: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और के सीवर में घुस गया?
2: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
1: सीवर में मरा रहा है तू?
2: गाली तो मत दो।
1: हेलो
2: हेलो,
1: फिर फोन कर दिया तूने?
2: अच्छा है, सीवर साफ होने का काम करो। एक चीज बोलो।
1: क्या बोलो?
2: कुकड़ुकु।
3: सर आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेन करी थी। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या है?
1: कुकड़ुकु।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
5: it's pagak.
6: The show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

सबर का फल मीठा होता है और हर अच्छी चीज को ना थोड़ा सा समय लगता ही है। And GCC ka Unified Tourist Visa definitely falls in this category. Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो Simply Afreen को right here on Mirchi Mornings. और इसकी बात ना हम काफी time से सुन रहे हैं. जानती हूँ मैं. In fact, 2023 में GCC countries ने Unified Tourist Visa को officially approve किया था. उसके बाद से 6 countries के बीच technical systems, passport authorities, immigration और regulatory requirements को coordinate करने का काम चल रहा था. अब ये visa exactly है क्या? पहले वो बता दूं मैं आपको. सिंपल वर्ड्स में आइडिया ये है कि एक यूनिफाइड टूरिस्ट वीजा के थ्रू ट्रैवलर्स कतर, सऊदी, यूएई, कुवैत, बहरीन और ओमान को कवर कर सकते हैं, मेकिंग मल्टी कंट्री जीसीसी ट्रैवल मच इजियर. वैसे ही जैसे आप शंगेन वीजा लेते हैं, यूरोपियन कंट्रीज ट्रैवल करने के लिए एक वीजा काफी सारी कंट्रीज कवर कर लेती है, बस उसी तरह से ये एक वीजा जीसीसी के 6 कंट्रीज को एक साथ कवर करेगी. और देखो, 6 कंट्रीज को एक सिस्टम पर लाना है तो प्रोसेस में टाइम तो लगेगा ना. That's obvious, but the good news is this, that GCC Secretary General ke according प्रोजेक्ट अपने फाइनल टेक्निकल एंड रेगुलेटरी स्टेजेस में पहुंच चुका है. ऑफिशियल लॉन्च डेट और फाइनल रूल्स का अभी वक्त है. हाँ, थोड़ा वक्त है ऑफ कोर्स, और कोई बात नहीं, अपना वक्त ले लीजिए. लेकिन ये जो वीजा है ये जरूर जब आएगा ना, तब देखना कि हमारे जो गल्फ कंट्री का टूरिज्म गेम भी ऊपर जाएगा. एंड इट इज गोना बी सो बेनिफिशियल फॉर ऑल द ट्रैवलर्स, फॉर ऑल द बिजनेसेस आउट देयर. मैं हूँ आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: अब इसे फिल्टर कहिए, मास्क कहिए, मुखौटा कहिए, हम सभी ने एट सम पॉइंट डाला है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और बात तो सच है ना कि हम अपने इमोशंस छुपाने में काफी टैलेंटेड होते हैं। दिल के अंदर कुछ और चल रहा होता है और चेहरे पर कुछ हुआ ही कहाँ है, सब ठीक तो है। और कभी कभी तो इतनी आदत हो जाती है कि सामने वाले को पता ही कहाँ चलता है कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन। और बस इसी ख्याल पर आज आफरीन की डायरी से कुछ लफ्ज़ है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी
0: तो अर्ज किया है, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर वो खुश है, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर वो खुश है, मैं खुश नहीं हूँ मगर देखकर लगेगा नहीं। क्या बात है कमाल है ना। शायरी में बार बार लगेगा नहीं कहाँ गया है, पर असल में लग तो सब रहा है, बस दिखाई नहीं जा रहा है माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइटर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood Bollywood Boulder Only on Mirchi It's Hot
1: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
2: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ। गाना रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए। दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, क्यों नहीं?

0: प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से।
1: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
5: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: The Mentalist Suhani Shah live

देखो चांसेस तो है कि आप पछताओगे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्रीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और अक्सर ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, हमारे ध्यान में से निकल जाता है, फिर हम सीरियसली नहीं लेते, और फिर जब हम इसके वीडियोस देखते हैं यार, लोगों से हम इसके बारे में सुनते हैं, तब ऐसा लगता है कि हाँ यार जाना चाहिए था ना। बार बार ऐसा थोड़ी ना होता है ना हमारे कतर में। वेल फिलहाल ऐसे ही कुछ मौका हम आपको दे रहे हैं मिर्ची वाले, जहाँ सुहानी शाह लाइव इन कतर है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मेंटलिस्ट है। और राइट नाउ लेट मी टेल यू, सुहानी शाह इज टूरिंग इन US एंड US इट्स कम्प्लीटली सोल्ड आउट। आई मीन ऐसा क्रेज है सुहानी शाह का हर जगह पर कि यार क्या ही बताऊँ मैं आप लोग को। दिस आई थिंक सो मेंटलिस्ट का शो जो होता है ना, इट्स नॉट जस्ट एनी शो, म्यूजिकल शो जैसा नहीं होता है जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये होगा, अच्छा ये गाने गाए जाएंगे, डांस शो होता है कि अच्छा ओके डांस होने वाला है, बट मेंटलिस्ट के शो में जो होता है आपका दिमाग जो होता है इट्स लाइक अ ब्लैंक स्लेट एंड यू कांट एक्सपेक्ट व्हाट इज गोना हैपन नेक्स्ट एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ सच शोज, जो बहुत रेयर अपॉर्चुनिटीज होती है ऐसे कतर में। एंड नाउ दैट इट्स देयर सो आई थिंक सो यू शुड रियली टेक ऑल द एडवांटेज ऑफ दिस एंड बुक योर टिकट्स नाउ। आप एस सिटी से कर सकते हो, स्नोनू सिटी से कर सकते हो, यानी क्यू टिकट्स पर कर सकते हो, प्लैटिनम लिस्ट पर कर सकते हो। और इनफैक्ट ऑल द मिर्ची लिसनर्स आउट हियर जो अभी मुझे सुन रहे हैं, मिर्ची 20 कोड अगर आप क्यू टिकट्स पर डालते हो यू विल ऑल्सो गेट अ 20% off. So what are you waiting for? यार जबरदस्त से offers और जबरदस्त से यहाँ पर tickets जब आ गए हैं and this is for a very limited time, क्योंकि tickets will just fly. It's gonna really fly. So यही बताने आई थी और ये बताते बताते अब अलविदा कहना चाहूंगी। मिलूंगी कल सेम टाइम सेम शो। अपना ख्याल रखिएगा। अरिजीत सिंह बादशाह जॉनिटा गांधी की आवाज में माइक से दिल तक आफरीन आपको कहती है टाटा बाय बाय सायोनारा।

0: Dilky feelings.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
2: जी बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
1: मैं मार दूंगा यार, बहुत गुस्सा आता है, रोज कोई ऑफिस में मेरी चेहरा बदल देता है, क्या करूं?
2: सिंपल है, बॉस की गोदी में बैठ जा, प्रमोशन भी मिलेगा।

0: only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Well, अभिजीत की इस वक्त खूबसूरत सी आवाज़ में आप तक मैं अगला गाना जहाँ पे एक तरफ पहुँचाने वाली हूँ, वहीं दूसरी तरफ इतना कहना चाहूँगी कि वक्त तो चला है कि एक बार मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए करें हम मीठी मिर्ची की शुरुआत. Well, this is RJ Anshu with you, Studio 2 Qatar number 1 Hindi Radio Station, Mirchi. It's hot. अभिजीत अनिल का याग्निक, एनी अगला गाना आपके रास्ते. एंजॉय.

0: Well, Abhijit and Alka Yagni ki khoobsurat si awaaz and what a lovely track it is, bhai, sach keh rahi hoon. अगर मैं अपने दौर की बात करूं, यानी कि उस ज़माने की बात करूं, जिस ज़माने के गाने सुनकर आप और हम बड़े हुए हैं ना भाई, सच कह रही हूँ, उनका मैजिक, उनका क्रेज़ जो है काफ़ी अलग. चलते चलते फिल्म से ये गाना मैंने आपको सुनाया जिसमें आपको नज़र आए शाहरुख खान एंड रानी मुखर्जी, म्यूज़िक बाय जतिन ललित एंड क्या गज़ब के शब्द बाय जावेद अख्तर साहब. मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:04.
1: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: वैसे अगर राज खोलने की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर से पर्दा इस वक्त उठाया जा सकता है.
2: मिर्ची अंशु
0: Very good morning, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ. एंड सच कह रही हूँ, हर दिन जब एक नई सुबह होती है ना, तो कोई ना कोई एक नया सा जोश, नया सा जुनून, एक नया सा उत्साह जो है ना मेरे अंदर 101% रहता है, क्योंकि बचपन में सिखाई गई ये बात आज तक मेरे जहन में एकदम पूरी तरह से डटी हुई है, बनी हुई है कि यार अगर अपनी लाइफ को देखने की हम कोशिश करें ना, जिंदगी और मौत की अगर हम बात करें तो जिंदा तो हम हर दिन होते हैं एक नई सुबह के साथ, इंसान मरता बस एक बार है. तो कभी जब दिल में ये ख्याल आए कि कुछ करना है, अच्छा करना है, नया करना है, तो उसके लिए कोई एक खास मौका, खास ओकेशन ढूंढने की जरूरत ही क्या है यार. हर एक नई सुबह, वो सुबह की किरण जब आप पर पड़ती है, आपकी जिंदगी को उजागर करती है, तो आप तक ये पैगाम पहुंचाती है कि भाई जो तेरे ख्वाब है ना, उसे ना ही सिर्फ मुकम्मल करना है बल्कि उस ख्वाब के पूरे होने की खुशी को अभी से जीना शुरू कर देना है. क्योंकि कहते हैं ना, जो हम बनना चाहते हैं वैसे अगर हम जीना शुरू करें ना, तो अपने आप वो मंजिल हमें मिल ही जाती है. तो जो करना है करो, लेकिन हाँ, अपने ख्वाबों को सिर्फ बंद आंखों से देखो नहीं, जीती आंखों में उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करो एंड अपनी मंजिल तक पहुंचो एंड जरूर पहुंचो. चलिए जी, सुबह सुबह इतना मोटिवेशन का डोज जो है वो काफ़ी है. एंड अगर इस वक्त आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो आपसे एक दरख्वास्त भी है. मुझे कैसे पता चले कि आप मुझे सुन रहे हैं एंड मेरे साथ कनेक्टेड हैं, अनलेस एंड अनटिल यू लेट मी नो अबाउट इट. सो मी गली वेटिंग फॉर योर गुड मॉर्निंग मैसेजेस 5000 1896. अच्छा लगता है जब आपका पैगाम आता है. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, डेफिनेटली लेट्स गेट कनेक्टेड देयर. मीनवाइल बंधु, जब तुम मेरे यार हो, तुम मेरे दोस्त हो, तो क्यों ना नीरज श्रीधर एंड कविता सेठ की आवाज में अगला पावर पैक गाना मैं आप तक पहुंचाऊं. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Cabana.
1: Murga, murga. La virtua, la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: हेलो बेटा नवनीत,
3: आप कौन?
4: पापा कहाँ हैं?
3: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
4: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
3: लेकिन आपको काम क्या है?
4: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
3: पापा ने कहा था?
4: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मदर को।
3: क्या हुआ अंकल?
4: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
3: अब मुझे क्यों डांट?
4: चुप कर।
3: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
4: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा था तूने?
3: पापा को ऐसे किस बात का? मुझे ये भी नहीं
4: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
3: लेकिन बुरी क्या
4: लगी? अंकल कल देखो एक मारूंगा।
3: बदतमीजी क्या करी?
4: अच्छा ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
3: कह रहा मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
4: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
3: ठीक है मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
4: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
3: क्या बोलूं?
5: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
3: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
4: चुप कर। मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: रोशन हंसिका परी की खूबसूरत सी आवाज पर इनका नाम सैयारा एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फीचरिंग अनीत पड्डा एंड आहान पांडे। ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया इस डुओ का, लेकिन इस वक्त किसी और डुओ की कहानी जो है मैं आप तक पहुंचा दूं।
1: मिर्ची अंशु
0: हला, वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। कहते हैं ना कि जिंदगी में जहाँ चाह है जहाँ राह है। अगर तुम दिल से किसी चीज़ को चाहो तो पूरी की पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। एंड ये कहानी इस वक्त अगर किसी की जिंदगानी को बयां करती है तो भैया वो हैं भारत के ऐसे डुओ जिन्होंने चाइना मास्टर्स में कुछ ऐसा कमाल किया जो कि आज तक इतिहास में हिस्ट्री में नहीं हो पाया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट चिराग शेट्टी एंड रेंकी रेड्डी। भाई ये दो नाम ऐसे हैं जिन्हें आप ना फॉरएवर याद करना शुरू कर दें अगर आप भी बैडमिंटन के उतने बड़े फैन हैं जितने की मैं हूँ। जरा सोचें कि किसी एक ऐसे देश में परफॉर्म करना जहाँ पे मैच हो रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी चैंपियंस खेल रहे हैं, अब उन्हीं के देश में जाकर उन्हें उनकी मिट्टी का मजा चखाना। भाई ये काम कर दिया है इस वक्त रेंकी रेड्डी ने, चिराग शेट्टी ने। चाइना मास्टर्स 2026 ओपन में भारत की पहली जीत इस डुओ ने किया, ये कमाल। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब ये मैच जो है ये जीतना इतना आसान नहीं था क्योंकि दुनिया के चैंपियंस इनके अगेंस्ट तो खेल रहे थे, लेकिन जिस तरह की पारी खेली गई, तीन सेट तक जो मैच किया 11-21, 21-13 एंड उसके बाद गजब तरह से खेलते हुए 21-17 में अपने ऑपोजिशन यानी कि ही जीटिंग एंड रन यांग को हराते हुए इन दोनों ने ये खिताब अपने नाम किया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है पता है? अगर अब तक भारत के इतिहास को देखने की कोशिश करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो भैया हमारी रगों में अगर कोई खून बहता रहा है तो वो है क्रिकेट का। लेकिन ग्रेजुअली जिस तरह से दूसरे स्पोर्टिंग इवेंट्स में भी अब इंडिया अपनी छाप छोड़ने लगा है, ये बात तय है कि अगर हमें जानना है, पहचानना है, तो किसी एक नाम से नहीं। भाई साहब जिस जिस जगह तुम किसी चीज़ को छूने की कोशिश करोगे ना, हम उस जगह अपनी छाप छोड़ के आएंगे। और इंडियंस ने ये बात बताना शुरू कर दिया है। देख लीजिए कतर में भी आप और हम जो हैं इंडियंस हैं, कतर की माटी की खुशबू को अपनाते हुए अपने देश का नाम यहाँ पर भी ऊँचा करते ही जा रहे हैं। सो टू ऑल proud Indians who are connected with me right now, good morning message 5001896, looking forward to hearing from you. Meanwhile KK ki awaaz and yaaro tumhari dosti ke naam ye aag lagana, enjoy. Stay tuned 89.6 Mirchi Vane, it's hot.

0: मुहावरे की स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची, it's hot.
5: The show was absolutely amazing.
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: The Mentalist Suhani Shah.

0: सुनने का मैं नसीस कौर की पावर पैक आवाज है। चाहे पुराने वर्जन की बात करूं, नए वर्जन की बात करूं, इस गाने ने हमारी जिंदगी में बिजली कड़काने में है वो बिजुरिया फील कराने में कहीं कोई कमी ना छोड़ी। लेकिन अब आपकी जिंदगी में सहूलियत की कमी ना हो इसका इंतजाम एक बार फिर से आपने और हमने कर ही लिया।
1: मिर्ची अंशु
0: यार, मतलब सच कह रही हूँ, जिंदगी में अगर लाइन में लगने की बात करूँ ना तो सिर्फ एक ही लाइन है जो मुझे अच्छी लगती थी ना, उसके बाद से आज तक कोई लाइन मुझे अच्छी ना लगी ना, बिल्कुल नहीं। लाइन तो बस वाली अच्छी लगती थी कि जब स्कूल की असेंबली में हम खड़े होते थे ना, क्रॉस राइट हमारा क्रश नजर आता था, हाय उस लाइन पे कोई हमें घंटों खड़े करते, धूप प्यास कुछ महसूस नहीं होता था। नहीं नहीं नहीं, ये बात मेरी नहीं है, ये तो उन लोगों की बातें हैं जिनकी मैं क्रश हुआ करती थी। मेरी जिंदगी में से कोई आया नहीं है, आई जस्ट टू लव माई सेल्फ। इस वक्त अगर लाइन में लगने की बात करें भाई, किसी भी सरकारी काम के लिए जब लाइन में लगना पड़ता है, वो लाइन जो है काफ़ी लंबी होती है ना, उस समय आपको और मेरे को बहुत अच्छी तरह से पता है कि कैसा महसूस होता है कि भाई क्यों, कोई शॉर्टकट क्यों नहीं है। मेरे दिल में तो कई ख्याल आते हैं कि वो वुमेन वाला कोई स्पेशल लाइन है क्या, मतलब ऐसा कुछ है कि हमें प्रिविलेज मिले और हम जो है अलग से जाके पहले अपना काम करा के निकल जाएं। लेकिन यहाँ पे बात आती है क्वालिटी की, तो आज लोग कहते हैं अच्छा यहाँ पे तुमको इक्वालिटी नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अब आपकी और मेरी समस्या दोनों खत्म हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि किसी को आपने ऑन अराइवल वीजा में बुलाए हुए हैं या आपके पहचान वाले हैं जो ऑन अराइवल वीजा में इस वक्त कतर में मौजूद हैं एंड उसे एक्सटेंड करना है, तो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का यही कहना है कि भैया ना तुम हमें परेशान करो ना हम तुम्हें परेशान करें, हमारे दफ्तर में आने की जरूरत नहीं है, हमारे सर्विस सेंटर में आने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट से अब ऑन अराइवल वीजा को फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। इस बात पर एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। लाइन पे लाइन लगती रही मिलोर, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया। अब ये कहानी और ये बातें जो है आप बिल्कुल ना कर पाएंगे, तो बस एक और ऑनलाइन सर्विस हमारी ज़िंदगी में आ चुकी है, फिंगर टिप में काम जो है वो होने वाला है। अब आप भी अपनी फिंगर उठाएं, अपने सेलफोन को पकड़ें एंड मुझे फटाफट से एक काम करवाएं यार, हाय हेलो का मैसेज तो भेजो, वेट कर रही हूं मैं। 5000186 5000186, लेट्स गेट कनेक्टेड द इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु। अभी एक सॉफ्ट लव के एरा को महसूस करते हैं अलका याग्निक एंड कुमार सानू की आवाज में। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: इंडियन एक्टर्स में से अक्षय कुमार इज द प्रैंकस्टर ऑन सेट। अगर सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल से पूछते हैं।
3: उदित नारायण आई वुड से यू नो ही वाज मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर देन अ सिंगर बट अ वेरी लवेबल प्रैंकस्टर एंड ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड पासिंग सम कमेंट्स मेकिंग एवरीबॉडी लाफ।
2: ये थी अनुराधा पौडवाल टॉकिंग अबाउट द वन द ओनली सर सर सर सर उदित नारायण ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: This show was absolutely amazing.
5: Hello, Qatar. I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

0: मैं श्रुति रानी की पावर पैक आवाज इन जिंदगी की कहानी बताने की कोशिश करूं तो भाई हर पल हर वक्त मस्ती में कुछ इस तरह से रहना है कि दिल जो है ना नाचते गाते गुनगुनाते रहे, हम तो यही चाहेंगे।
1: मिर्ची अंशु।
0: वैसे इस वक्त अगर मैं नाचने गाने गुनगुनाने की बात करूं तो चलिए एक ऐसी फिल्म की दास्तान आपके बीच पेश करते हैं जिसने हमें डीपली किसी चीज से कनेक्ट किया, तो वो है एक बहुत खूबसूरत सा एंड प्यारा सा म्यूजिक। लेकिन देखो ये फिल्म कौन सी है ये बात मैं नहीं बताऊंगी, सारी बातें मैं करने लगूं तो आप क्या करोगे, आप ही तो कुछ करोगे ना यार। नहीं, काम चोरी वाला काम नहीं करना है अपन को। कोई तो बॉलीवुड की बहुत ही फेमस सी फिल्म है जिसका एक बैकग्राउंड स्कोर मैं आपके बीच पेश करूंगी, काफी प्रोमिनेंट है, बहुत फेमस है, म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा है ये। आपको इस धुन को सुनना है, परखना है, पहचानना है, मुझे ये बताना है ये है तो है कौन सी फिल्म। 5000 1896 5000 1896। वी विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। फटाफट से धुन सुनने के लिए और जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा लगता है यार जब जवाब आता है। ऑल राइट, इतना जो हिंट है वो काफी है, आप फटाफट से बताओ ये है तो है कौन सी फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर। 5000 1896। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर फटाफट वाला मैसेज। मीनवाइल अलसा मिंदोन सैन मोहित चौहान की आवाज में एक बहुत प्यारा सा गाना आप तक। एंजॉय 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: सागर की आवाज सुजैन का साधन, व्हाट अ लवली टेरिफिक ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी। लेकिन एक बात बताने की कोशिश करूं, इट इज अजब प्रेम की गजब कहानी। अक्सर ये होता है जब इस फिल्म के टाइटल को लोग बोलने की कोशिश करते हैं तो ये अजब एंड गजब में ना काफी कंफ्यूजन होता है। ज और ज जो है जिंदगी के बहुत सारे मायने बदल देता है, जैसे कि स और श। मेरे नाम को अगर किसी ने सर से एंड करने की कोशिश की ना, सरासर सच कह रही हूँ, बात करना बंद कर दूंगी। वेल, यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, एन बंदी है आपके साथ। मिर्ची अंशु। हाँ जी, तो जरा उस धुन पे एक बार फिर से नजर नहीं कान डाला जाए जिसकी दास्तान मैंने आपसे कुछ देर पहले आपके बीच पेश की थी। बॉलीवुड का तो कोई तो आइकॉनिक सा एक ट्रैक है जिसकी बहुत ही खूबसूरत सी म्यूजिक है। इनफैक्ट पूरी के पूरे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जो है वो काफी कमाल है। बस उसकी ग्लिम्स झलक मैंने आप तक पहुंचाई है ना, आपको सुनकर आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना है कि ये है तो है किस फिल्म से। एक काम करते हैं, जिन लोगों ने अभी भी ज्वाइन किया मैं फिर से एक बार सुनाती हूँ, एंड अभी भी अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो जब तक मैं आप तक करेक्ट आंसर पहुंचाऊं आप अपना जवाब जो है मुझ तक देना 5000-1896 पे, विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, एंड हियर वी गो। नाउ सीरियसली, एवरी टाइम दिस ट्यून प्लेड आई फेल्ट लाइक आई नीड टू फॉल इन लव। नहीं, स्कूल टाइम पे ऐसा ही होता था, धुन मजबूर करती थी कि जिंदगी में किसी से प्यार हो जाए।
1: Hi Anshu, good morning. The movie name is Mohabbatein. Thank you. My name is Mohammad Mazharullah.
2: Hi, this is Kaiza Dia. The answer is Mohabbatein.
0: Well, आपने जो कहा वो पूरी तरह से सही, जितने लोगों ने लिख कर भी जवाब दिया वो भी पूरी तरह से सही, कई लोगों ने DDLJ भी कहा, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने कहा, काफी कंफ्यूजन होता है इन दोनों पे, लेकिन द करेक्ट आंसर इज मोहब्बतें। यार देखो, बात इतनी है कि कुछ धुने ऐसी होती है ना जिनके लिए ना कोई लिरिक्स चाहिए ना कोई इंट्रोडक्शन, बस वो एक पहला नोट बजता है ना आप पहचान जाते हैं कि फिल्म है तो है कौन सी। अगर खासकर इस धुन की मैं बात करूं तो साल था 2000, फिल्म को डायरेक्ट और राइट किया था आदित्य चोपड़ा साहब ने, इसे प्रोड्यूस किया उन्हीं के पप्पा ने यानी कि यश चोपड़ा जी ने, एंड साथ ही म्यूजिक की अगर बात करें तो जतिन ललित का क्या गजब का कॉम्पोजिशन, एंड इस जितने भी गाने इस फिल्म के आपको पसंद आए उसके लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी जी ने। लेकिन यहां पर आती है एक इंटरेस्टिंग सी बात जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, जिन बैकग्राउंड मेलोडीज ने मोहब्बती की पूरी दुनिया को इतना मैजिकल बनाया उसके बैकग्राउंड म्यूजिक एंड म्यूजिक अरेंजमेंट का क्रेडिट अगर सही मायने में किसी को दिया गया सो दैट वॉज बबलू चक्रवर्ती। एब्सोल्युटली यू हर्ड दैट राइट। एंड यहाँ पर एक और खास बात यह है कि अगर इस फिल्म की हिस्ट्री को मैं देखने की कोशिश करूं सो मोहब्बतें वाज ओनली आदित्य चोपड़ा सेकंड फिल्म एज अ डायरेक्टर आफ्टर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लेकिन जो कमाल धमाल आदित्य चोपड़ा ने प्रिसिशन के साथ किया भाई, ही बिकेम इवेंचुअली द लव गुरु डायरेक्टर। चलिए जी, 26 साल जो है बीत चुके हैं लेकिन आज भी ये धुन हमारे दिल में उतनी ही खनक पैदा करती है जितनी की पहली बार की थी। तो क्यों ना इस फिल्म से लता मंगेशकर जी उदित नारायण की आवाज़ में अगला प्यारा सा गाना मैं आप तक पहुंचाऊं, एंड अगर गाना पसंद आए तो थैंक यू मिसेज अंशु को भेजना जरूरी है। 5000-1896 एंजॉय। बंदी का नाम अंशु। हाँ।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Hello. Hello.
1: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज।
2: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
1: हाँ जी।
2: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
1: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
2: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर, रमेश इसे बंद कर दे। यार आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
1: मैं
2: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन, यार इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
1: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
2: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
1: तो ड्रिल मशीन हमारा लेके तो चोरी करने गया।
2: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
1: चोरी करने के लिए
2: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
1: यहाँ पे मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फंसवाएगा।
2: मेरी बात सुन,
1: माँ का तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया।
2: मेरी बात सुन।
1: हेलो
2: यार, कमाल है आप तो, मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
3: सर सर सर सर, मेरी बात सुनिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था। आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
1: कहाँ से बोल रहे भैया?
3: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
2: अब ठीक है।
4: Mirchi Murga, Naveed ke saath, only on Mirchi. It's hot.
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snoo Noo। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़, क्या खूबसूरत सा गाना है। एंड सच कहूँ यार, अगर चाह की बात करूँ तो आज दिल में कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन पलों को जीने की चाह जो है ना, वो जरूर है।
1: मिर्ची अंशु
0: यार, पता है कि आज की डेट में जिंदगी हमें ना जाने कितनी खूबसूरत यादें बातें क्यों ना दे दे, हम ना जाने क्या कुछ अचीव भी क्यों ना कर लें, जिंदगी में कितने आगे भी क्यों ना बढ़ जाएं। लेकिन यार बचपन की

अच्छी तरह से याद है यार। एंड वो समय जब स्कूल से आने के बाद सबसे पहला एजेंडा बस यही रहता था कि बैग जो है कहीं एक किनारे में फेंकना है, आई मीन रखना है, एंड उसके बाद सीधा अगर कहीं निकलना है तो अपने दोस्तों की टोली में। भाई वो सिंपल से गेम्स, लेकिन कितनी खुशी हमें दिया करते थे। वो नदी पहाड़ याद है, छुआ छुआई, सांखली, मतलब हम कितना कुछ खेलते थे, कैच कैच, हाइड एंड सीक, पकड़म पकड़ाई। एंड बिलीव मी, उन गेम्स ने, उन लम्हों ने, इन पलों में ना हमने सब कुछ जिंदगी का जितना भी फलसफा होता है वो सीख लिया। नेगोशिएट कैसे करते हैं, अपनी बात कैसे मनवाते हैं, रूठना कैसे है, मनाना कैसे है, अपने आप को लीडर कैसे साबित करना है, फॉलोवर भी कैसे बनना है ना, इसकी कोई खास स्पेसिफिक स्पेशल क्लासेस नहीं लगी। और जितनी ईमानदारी से, जितनी शिद्दत से हमने इन लम्हों को जिया ना, मुझे नहीं लगता यार आज की डेट में ऐसा कोई भी पल होता है जब हम खुद में इतने ज़्यादा डूबे होते हैं किसी काम में। ना कोई फोन, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, वो बस चार दोस्त यार। एंड पता है घर की घंटी बजेगी, एंड दरवाजे में वो खड़ा होगा या खड़ा होगी, एंड बस यही पूछेगी, आंटी अंशु स्कूल से आ गई क्या, आंटी अंशु ट्यूशन से आ गई क्या। एंड मम्मी चाहे कितना भी कह ले कि बेटा अभी जॉब ही, वो नहीं आएगी, फिर से आधे घंटे में फिर आना, आंटी अंशु की पढ़ाई हो गई क्या। क्या दिन थे यार, क्या लम्हे थे यार। चलिए एक बात बताएं, क्या आपकी कहानी मेरी कहानी से मिलती है? क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई दोस्त था जो घंटी बजा बजा के बार बार बस ये घर पूछने आया करता था कि आंटी अंशु आ गई क्या। 5000 1896 5000 1896, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल एक ऐसा गजब का गाना जो इस वक्त मैं आपके बीच पेश करने वाली हूँ, आप सुनेंगे एंड मुझे बताएंगे इस गाने को सुन के सबसे पहले आपको किसकी याद आई, किसने परफॉर्म किया इस गाने में, कमाल किया, जरा सुने। एंजॉय। बंदी का राम अंशु।

0: हॉट है। ये था गुची, संग बाय अरूप खान फीचरिंग रियाज अली, कंपोज बाय प्रतिंदर, लिरिक्स बाय कप्तान एंड म्यूजिक बाय मिक्सिंग। फुल ऑन मिर्ची बैंगर, इट्स हॉट।
1: मिर्ची स्टोरीज, स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है। मिर्ची।

0: It's hot.
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

वैसे सच कहूँ ये गाना जो ये बड़ा कमाल है जावेद अली एंड कृति सांगतिया की आवाज़ में मैंने आपको ये गाना सुनाया, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि भाई इस गाने में इनको भी रटने की उतनी बीमारी थी जितनी कि मुझे तुम तक वर्ड को इन्होंने उतनी बार रट्टा मारा है जितना कि मैंने इंग्लिश के उस फर्स्ट लेसन के फर्स्ट आंसर का रट्टा मारा था। मिर्ची अंशु भाई बचपन के दिनों में जेन्युइनली अगर हमने कोई अभियान कूट कूट के चलाया सो दैट इज रट्टा मारो अभियान, वो हर एक चैप्टर के पीछे के वो सेवन क्वेश्चंस के सेवन आंसर्स जो टीचर हमें क्लास में डिक्टेट कर लगाया करती थी बताया करती थी, एंड हमारा काम जो है उसके बाद एक ही होता था उस आंसर को वर्ड टू वर्ड कॉमा सेमी कॉलन हर किसी के चांस साथ जो है वो रट्टा मारना है एंड एग्जैक्टली एज इट इज एग्जाम में लिख देना है। एंड कुछ बच्चे तो रट्टा मारने में ऐसे एक्सपर्ट होते थे कि ऐसा लगता था बुक की प्रिंटिंग जो है ना इनके आगे फेल हो जाए। इनफैक्ट मेरे क्लास में एक बंदी हुआ करती थी, आयरनी देखें कि मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अगर टीचर ने कहीं मिस्टेक किया एंड वहां पे उसे क्रॉस किया तो मैडम अपनी नोटबुक में भी वहीं पे क्रॉस करेंगे एंड एग्जाम में वो एग्जैक्टली क्रॉस उस सोल्यूशन में जरूर आएगा क्या दिन थे यार, रट रट के हम किस तरह से पास हुए हैं, किस तरह से फर्स्ट आए, लेकिन आज की जनरेशन में सब कुछ कितना बदल गया है। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आने लगे हैं, बुक के बीच में से सवाल कहीं भी आ सकता है, बच्चों को हर सिचुएशन के लिए रेडी रखना है। इसीलिए कहते हैं कि इनकी लैंग्वेज पे इतनी ज्यादा कमांड हो कि कैसा भी क्वेश्चन आए खुद से आंसर्स जो है वो ड्राफ्ट कर सके। आई एम सो हैप्पी, हमारे दौर हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, वी वर हैप्पीली रट्टा मारो किड्स यू नो। एंड आज के डेट में उसे सोचने की कोशिश करें तो लोग कहते हैं तुम तो रट रट के पास हुए हो, भैया तुम्हें पता क्या है उस रट्टा मारने में कितनी मेहनत लगती थी। क्या आपने कभी किसी आंसर को किसी ऐसे को रट्टा मारा है, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ और रट्टा मारा हुआ क्वेश्चन जो है अलग से दूसरा आ गया और तुमको पता नहीं क्या करना है। 5000 1896 आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। वैसे इतना बता दूं चाहे तुम कितना भी कुछ रट क्यों ना लो, कोई तो है जो हर तोड़ का तोड़ निकालना जानती है। आपसे कुछ देर में बताऊंगी, मीनवाइल जुबिन नौटियाल की आवाज में ये गाना एंजॉय।

0: Hollywood Bollywood Bolda Only on Mirchi It's Hot
1: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
2: दाल चावल और अचार ना हो आम का, हाँ पानी आ गई। स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की जरूरत है। मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची। यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की।
1: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: This show was absolutely amazing.
4: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: सर हेमा सर देसाई की पावर पैक आवाज एंड व्हाट अ गजब गाना इट इज. अरे जानम जब इतना कहा है तो समझ ही जाओ ना.
1: मिर्ची अंशु
0: आई एब्सोल्युटली लव 90s के गाने यार. मतलब सच कह रही हूँ, चाहे आप उन गानों की बात करें, चाहे आप उस एनर्जी की बात करें या पूरे के पूरे मैजिक एंड फील की बात करें, खासकर जब ऑन स्क्रीन आपके आगे सलमान खान हो, तो भाई आप किसी को सोचे तो और किसे ही सोचे, मुझे एक बात बताना. चलिए जी, अगर आप समझने समझाने की मैं बात करूँ तो एक काम आपको ज़रूर करना है जो सलमान एंड उर्मिला ने इस फिल्म में नहीं किया है, ऐसे दोस्तों से बच के रहना है. बड़े कमाल के दोस्त हैं. क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई दोस्त है जो हर महीने कभी ना कभी आपसे कुछ पैसे जो है वो उधार मिले एक टाइम के बाद? लेकिन उस दोस्त की खूबी एंड खासियत यह है कि वो पैसे उधार में लेता है, लेकिन हाँ पलट के आपको वापस भी देता है. लेकिन उसका दिमाग जो है इसके अभियान को देखें, पैसे तब लेता है जब एक्सचेंज का रेट काफी हाई हो, एंड पैसे लौटाता तब है जब वही एक्सचेंज का रेट जरा कम हो. ऐसे कोई दोस्त हैं तो उनसे जरा बच के रहना, संभल के रहना. वैसे आइडिया भी बुरा नहीं है, आप ये काम शुरू कर सकते हो, बैठे बैठे अच्छी खासी कमाई जो है हो ही जाती. पर अगर आज ट्रांसफर करना चाहेंगे तो आई पे मनी में क्या भौकाल है जरा देखिए. अगर ट्रांसफर करेंगे तो वन रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 25.89, पाकिस्तानी रुपीज 76.16, बांग्लादेशी टाका 33.67, लंकन रुपीज 90.02 एंड नेपाली रुपीज 41.32. तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां. अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए अंशु के साथ बने रहे ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1. इट्स हॉट.

0: की पावर पैक आवाज और बड़ा लवली ट्राई करे ये खूबसूरत सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन नब किसी मीठी सी चीज की याद दिला दूं।
1: मिर्ची अंशु।
0: देखो फाइनली दिन का वो वक्त आ चला है जब मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं भूख की तैयारी आपकी जिंदगी में मैं कर ही दूं। खाने की बात कर रही हूँ मैं। यार दिन के 12 बज रहे हैं, मुझे पता है कि अब से कुछ देर में लंच टाइम होने वाला है, तो अब अगर मैं खाने पीने की बात ना करूं तो मैं कब ही करूं। हैविंग सेड दैट, एक बार फिर से आज कोई तो पहेली है जो मैं आपके बीच पेश करूंगी, जो आप बुझाएंगे, साथ मुझे ये बताएंगे कि आपकी भूख और प्यास बुझी या बढ़ गई। करेक्ट आंसर कि इस पहेली के पीछे कौन सी डिश का नाम छिपा हुआ है। नाउ दिस इज समथिंग रियली एक्साइटिंग एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस, एंड इसका कोई भाई भी है अगर साथ में वो मिल जाए ना, या वो बहन मिल जाए ना भाई, तो ये डुओ, ये कॉम्बिनेशन जो है वो कमाल हो जाता है। लेकिन भाई बहन की बात हम बाद में करेंगे, पहले इस ओरिजिनल डिश पे नजर डाल लें। तो चलिए पहेली बुझाने के लिए हो जाए तैयार। अगर करेक्ट आंसर पता चले तो भेजना है एज यूजुअल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, व्हिच इज 5000 1896 5000 1896। वी विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर एंड मिर्ची अंशु फॉलो करना मत भूलना। चलिए पहेली कहती है, गोल गोल घूमती हूं पर चक्कर मुझे आता नहीं, चाशनी में डूबती हूं पर तैरना मुझे आता नहीं, गर्मा गर्म मिल जाऊं तो दिल खुश हो जाए, बताओ वो कौन सी मिठाई है जिसे देखकर मुंह में पानी आ जाए। भाई साहब इसे ना पहचाना तो किसे ही जाना, एंड इसका वो कॉम्बो कौन है कि अगर ये दोनों साथ में मिले तो बात बन जाए। 5000 1896। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। मीनवाइल जुबिन गर्ग की आवाज में गैंगस्टर लव स्टोरी से ये गाना सुनना लाजमी। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Nici.
1: Scabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La viva la burga. Nici, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: हेलो। हाँ बोलो कौन।
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ, आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोल कौन रहा है।
3: बोल कौन रहे हो, कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की। नीचे से बोल रहा हूँ, आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
2: बोल कौन रहे हो।
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोला था।
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार, आप लोग खाते क्या हो, कितना गहरा कर दिया आपने।
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर।
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
2: हाँ बोलो।
3: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से। ओए बंद करो इसे। ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार, आप लोग खाते क्या हो, कितना गहरा कर दिया आपने।
2: कौन बोल रहा है, कहाँ घुस गए यार।
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ, आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोला था, हुआ क्या है कुछ तो बताओ।
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। ओए यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से। ओए बंद करो इसे।
2: कब आया था, कब घुसा अंदर।
3: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
2: तो कहाँ से रहा है, तो नहीं हो गया है।
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
3: ऑफिस क्यों गए, सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
2: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और के सीवर में घुस गया।
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
2: सीवर में मरा रहा है तू,
3: गाली तो मत दो।
2: हेलो
3: हेलो,
2: फिर फोन कर दिया तूने।
3: अच्छा है, सीवर साफ हो जाएगा, काम करो एक चीज बोलो।
2: क्या बोलो।
3: कुकड़ू
4: सर, आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या है।
2: कुकड़ू
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
6: it's pagak.
7: The show was absolutely amazing.
8: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
9: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनू। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: मतलब लता मंगेशकर नवदत्त नारायण की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ यार, क्या प्यारा सा खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द फिल्म दिल तो पागल है इस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन एक कोई खास बात भी आप तक पहुंचा दूं।
1: मिर्ची अंशु
0: अगर भोली सी सूरत की बात करूं तो इनकी भी जो सूरत है ना ये बड़ी भोली है, लेकिन हाँ ये बड़ी क्रिस्प एंड कड़क जरूर है। ये कौन है ये मैं ना ही बताऊंगी, ये तो आप बताएंगे। बिल्कुल अब से कुछ देर पहले मैंने आपके बीच पेश की एक पहेली जिसे बुझाकर आपको बस मुझे ये बताना था कि इसके पीछे अगर छुपी है तो कौन सी डिश की कहानी, एंड मैंने ये बताया था ये कोई तो स्वीट सा यानी कि एक डिजर्ट है। चलिए फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइन मैं फिर से एक बार ये पहेली

0: के बीच पेश करती हूँ। अगर अभी भी सवाल सुनाते सुनाते आपने जवाब ढूंढ लिया तो बस मुझे भेज दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 5000 1896 5000 1896 पर, विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। एंड पहली कुछ इस तरह से हुए है कि गोल गोल घूमती हूँ पर चक्कर मुझे आता नहीं, चाशनी में डूबती हूँ पर तैरना मुझे आता नहीं, गरम गरम मिल जाऊं तो दिल खुश हो जाए, बताओ वो कौन सी मिठाई है जिसे देखकर मुंह पर पानी आ जाए। 5000 1896 आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। मीनवाइल जरा देखिए लोगों ने क्या कहा है।
1: हाय अंशु, दिस इज नदीम। ये आप बात कर रही हैं जलेबी का, क्योंकि जलेबी के साथ फिर इमरती भी आता है, वो भी सेम होता है।
2: आपने जो भी मिठाई का नाम पूछा ना, उसका नाम है जलेबी। थैंक यू, माय नेम इज रोहित।
3: ये मिठाई का नाम जलेबी है। नदीम हियर।
4: हाय, गुड आफ्टरनून मैडम अंशु। ये जो डिश आपने पूछा है, ये मेरे ख्याल से खीर जलेबी। हमारे वहाँ खीर जलेबी खाते हैं और शायद खीर रबड़ी भी हो सकती है। मेरा नाम फारूक है फ्रॉम राजस्थान।
0: थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। आप सबने जो कहा ये पूरी तरह से सही। अगर इस डिश की कहानी जो मैंने बयां करने की कोशिश की अपनी जुबानी, उसके नाम की बात करूँ, सो इट इज जलेबी। एंड आई एब्सोल्युटली लव गर्मा गर्म जलेबी विद रबड़ी यार। एंड जैसा कि फारूक ने कहा, राजस्थान में बिल्कुल हम खीर के साथ जलेबी खाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना यार, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। लेकिन एक बात बताऊँ, जलेबी के ना दूसरे भी आ रहे हैं, बड़े पक्के वाले दोस्त आ रहे हैं। कभी गर्मा गर्म जलेबी के साथ गर्मा गर्म पोहा खा के देखना, हाय हाय क्या लाजवाब कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा हम ना छत्तीसगढ़ में, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आती हूँ, तो कोई रायपुर वाले तो मुझे शाउट आउट पक्का देना। 5000 1896 हैविंग सेड दैट लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। जलेबी के दूसरे यार की मैं बात करूँ, सो इट इज समोसा भाई। गर्मा गर्म समोसा विथ गर्मा गर्म जलेबी, एपिक कॉम्बिनेशन, ट्राई करें। लेकिन अब मुझे आप ये बताएं, मुझे अगर आज जलेबी की क्रेविंग हो रही है तो मैं कहाँ जाऊँ कतर में? वे कैन आई गेट द बेस्ट जलेबी हियर इन दोहा? 5000 1896 5000 1896 आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। एंड जलेबी, माय नेक्स्ट ट्रैक इज फॉर यू, इतनी सी बात है।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.

0: पल बंजारी की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज, इतना प्यारा सा खूबसूरत सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन कोई अच्छा सा रेट है वो भी आप तक पहुंचा दूं।
1: मिर्ची अंशु
0: भाई साहब, दिल को मिलती है खुशी, न अपरंपार खुशी मिलती है, सच कह रही हूँ, जब जब ये रियलाइज हो कि भैया किसी की जेब ढीली करने का वक्त आ गया है, लेकिन हाँ अपनी तो है सॉलिड तरह से भरने का भी रेट और वक्त आ चला है। पर जब भी सोने के रेट में जरा सी वो गिरावट आए ना, तो जरा देखो कि लड़कियों का दिल जो है वो कैसे मचलता है। वैसे जरा देखिए, अगर आज के गोल्ड रेट्स को देखने की कोशिश करें तो अल फरदान एक्सचेंज में गोल्ड रेट्स का क्या ही बोलबाला है।
2: गोल्ड अपडेट,
0: अगर आप खरीदना चाहेंगे पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार्स विद प्राइस टेस्ट कतरी रियाल 593, 5 ग्राम इस प्राइस टेस्ट कतरी रियाल्स 2781 एंड साथ ही 10 ग्राम इस प्राइस टेस्ट कतरी रियाल्स 5492, टॉकिंग अबाउट 1 ounce विद प्राइस टेस्ट कतरी रियाल्स 16980 एंड 10 तोले की बात करें विद प्राइस टेस्ट 63061 कतरी रियाल्स। तो बस फटाफट से कुछ खरीदी हो जाए भैया, सोना जो है अपने आप में गजब का बेहतरीन सा इन्वेस्टमेंट है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, बट मीनवाइल गोल्ड अपडेट्स इज ब्रॉट टू यू बाय
3: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल फरदान एक्सचेंज, पैम्प्स ऑफिशियल एजेंट इन कतर, बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम्प गोल्ड बार्स
4: एंड अर्न कतर एयरवेज एवियोस टुडे।
3: विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
3: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ गाना। रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए।
4: दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, क्यों नहीं

0: हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से।
1: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: The show was absolutely amazing.
4: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by iPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.

संजू राठौर की एक खूबसूरत सी आवाज और बड़ा लवली ट्रैक है। इसके मराठी वर्जन की बात करूं, हिंदी वर्जन की बात करूं, भाई इस गाने ने ना हमारी जिंदगी में हलचल मचाई एंड सॉलिड मचाई। वैसे गाना सुनने के बाद एंड गुलाबी रंग सुनने के बाद आई स्टिल रिमेम्बर कैसे उन दिनों, यार अगर हमारे फेवरेट कलर्स की बात करें तो मैक्सिमम लड़कियों का अगर बचपन के दौर में कोई फेवरेट कलर हुआ करता था सो इट यूज्ड टू बी पिंक, एज इफ पिंक जो है वो एक स्टेटस सिंबल बन गया था हमारी फेवरेट चॉइस का। एंड साथ ही अगर लड़कों की बात करें सो दैट यूज्ड टू बी ब्लू। 90s से जितने भी लोग हैं 101% मेरे साथ कनेक्ट करेंगे, मतलब पिंक अगर आपका फेवरेट कलर नहीं तो कहीं ना कहीं एक गुनाह है लड़कियों के लिए, लड़के ऑल ब्लू। लेकिन आज की जनरेशन में, आज की डेट में जब बच्चों से मैं पूछने की कोशिश करती हूँ व्हाट इज योर फेवरेट कलर, नो वो पिंक नहीं बोलेंगे, दे कम अप विद फूशिया, यू नो आई लव फूशिया, हाँ बेटा वो पिंक का ही शेड है, हम जैसे वो डार्क गुलाबी कहा करते थे। एंड आज कितने वैरायटी आने लगे हैं, अगर मैं अपने घर पे ही देखूं, अगर किसी बच्चे से पूछूं तो कहते हैं आई जस्ट लव पर्पल, ओ या बेबी यू लव पर्पल। चलिए मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगी, क्या उन दिनों बचपन के दौर में आपका फेवरेट शेड भी ब्लू या पिंक हुआ करता था और वॉज इट समथिंग एल्स? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एज इन माई व्हाट्सएप 5000189650018 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु। वैसे आज की डेट में मेरा फेवरेट कलर इज फूशिया, यू नो दैट शेड ऑफ पिंक। बेनी दयाल एंड हर्षदीप कौर की आवाज उफ, ये अगला गाना एंजॉय। मा सलामा हबीबी, सी यू टुमारो, एंजॉय।

0: भैया इसको बोलते हैं असली भौकाल।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, और एक जमाना याद होगा आपको जब प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब या फॉर दैट मैटर म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जो भी आए वो फ्री थे, मतलब सबके लिए इक्वली। उसके बाद फिर उसमें एड्स वैड्स आने लगे और फिर लोग उससे इरिटेट होने लगे। उसके बाद फिर ये प्रीमियम वाला ऑप्शन आ गया। तो बस ये प्रीमियम ऑप्शन एक्चुअल में अ प्रीमियम फील दे रहा है, स्पेशली टू द म्यूजिक लवर्स आउट देयर। कृपया अपने कान खड़े कर लें, क्योंकि अब आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा टू एल्बम्स जो रिलीज होने वाली हैं। और इसकी शुरुआत हुई है मिर्जापुर द मूवी के साथ। सो बेसिकली एक्सेल एंटरटेनमेंट और यूनिवर्सल म्यूजिक ने टीम अप किया विद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, और उन्होंने मिर्जापुर द मूवी के एल्बम का प्री एक्सेस दिया टू द पीपल हु आर प्रीमियम कस्टमर्स। और कसम से भैया इसी को बोलते हैं प्रीमियमनेस का असली भौकाल। वैसे आप अपना प्रीमियम एक्सेस लेके जिंदगी चला रहे हो या किसी और पे पैरासाइट बन के फीड कर रहे हो? सॉरी आई हैड नो इंटेंशंस टू ऑफेंड। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burka, burka. La vieja la burka.
1: Mirchi, burka.
2: हेलो
3: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
2: वेरी फाइन, थैंक यू।
3: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
2: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ,
3: नहीं वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो,
2: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
3: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
2: मतलब गेम है क्या ये?
3: आओ मिलो शिलो शालो,
2: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
3: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट,
2: पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट।
3: देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह। आओ मिलो,
2: आओ मिलो
3: शिलो शालो,
2: कच्चा धागा,
3: रेस लगा लो,
2: रेस लगा लो,
3: दस पत्ते तोड़े,
2: दस पत्ते तोड़े,
3: एक पत्ता कच्चा,
2: एक पत्ता कच्चा।
3: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज़ से बोलेंगे। दस पत्ते तोड़े,
2: तोड़े
3: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
2: दस दस दस पत्ते तोड़े।
3: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा।
2: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा।
3: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
3: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
2: श्रीवास्तव बोले
3: तो मिस्टर श्रीवास्तव। बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
2: यार ये कुछ नहीं
3: कर सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
5: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCTs Nuno. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। रिजेक्टेड बाई टॉक्सिक, डिलेड बाई स्पाइडरमैन, और शुरुआत हुई थी इस फिल्म को लेकर एक बोगस ऑफर के साथ, बट आज इसी मूवी ने हिस्ट्री क्रिएट कर रखी है। बात कर रही हूँ हनुमान अंश की। हाँ जी, जो फिल्म तैयार हुई 2 करोड़ के बजट पे, बट आज इस फिल्म ने अबाउट 80 करोड़ तक कमा लिए हैं ऑन द बॉक्स ऑफिस। इसी को बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ, कितना पावरफुल हो सकता है यार, क्योंकि ये 5th वीकेंड रन चल रहा है इस मूवी का, और ऐसा ही रहा तो इसे 100 करोड़ क्लब में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। माइंड यू, द मूवी रिलीज्ड ऑन द 31st of July। अगर अभी तक आपने नहीं देखी, देन ऑफ कोर्स इसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स की वजह से ही देखने चले जाओ कम से कम। भाई, ये नाम को लेकर कितना बवाल होता है ना हमारे यहाँ, लेकिन सब भूल जाते हैं शेक्सपियर अंकल ने बोला है व्हाट्स देयर इन नेम। एक्चुअली क्या हुआ, 4th of September को रिलीज हुई अर्शद वारसी की फिल्म जीवन बीमा योजना, ये तो पहले उसका नाम था, नाम चेंज करके किया गया जीवन या बीमा कौन। सो बेसिकली इस नाम के ऊपर इसलिए कॉन्ट्रोवर्सी हुई क्योंकि CBFC ने बोला कि भाई फिल्म का नाम जो है हमारे प्रधानमंत्री की जीवन ज्योति बीमा योजना से काफी सिमिलर है, तो इसको तो चेंज किया जाए। सिर्फ उतना ही नहीं, मूवी में कुछ ऑब्सीन विजुअल्स और डायलॉग्स भी हटाए गए। माइंड यू, इट इज अ क्वर्की कॉमेडी जो 1 घंटे 59 मिनट्स के रन टाइम के साथ आई है, जिसमें अर्शद वारसी के अलावा संजीदा शेख और विजय राज जैसे और भी एक्टर्स हैं। हरीश व्यास डायरेक्टोरियल इस फिल्म के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि इसमें ना फादर सन के अल्टीमेट कॉम्बो को दिखाया गया है। हरीश व्यास की इस फिल्म का नाम है ओम का हरी, जिसका ट्रेलर इज आउट, और अगर आपको एक ओवरव्यू लेना है तो प्लीज देखिए ये फिल्म। इट इज अ स्मॉल बजटेड मूवी जिसमें बहुत बड़े बड़े सितारों के नाम नहीं है, बाकी ट्रेलर देख के मैं तो काफी इंप्रेस्ड हूँ टू वॉच द मूवी इन थिएटर्स जो आ रही है 18th of September को। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। सो टू ऑल द समय राणा फैंस आउट देयर, अगर आपने उनके कमबैक वाले एपिसोड को देखने के बाद अपने पापा को आई लव यू बोलने की शुरुआत कर दी थी, then I guess it's high time कि आप ऐसी फिल्मों को भी सपोर्ट करें। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: खेलूं मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अगर आप पहली बार मेरा शो सुन रहे हैं देन लेट मी एक्सप्लेन। अभी टाइम हो चुका है टू फाइंड मिर्ची फिल्मची थ्रू माय शो, एक नहीं दो, जहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ टू गो टू माय इंस्टाग्राम और वहां मेरे डीएम्स में स्लाइड इन करके अपना नंबर भेजिए ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूं। तो सबसे पहले आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है आदि। लेट्स बिगिन। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल किसको बोलते हैं?
3: हेमा मालिनी।
0: हेमा मालिनी की फिल्म विद अमिताभ बच्चन जिसमें वो अपने बच्चों के घर रहने जाती हैं।
3: अच्छा, वो क्या, बागबान।
0: ग्रेट। बागबान में अडॉप्टेड बेटा कौन है?
3: सलमान खान।
0: सलमान खान की फिल्म अदर देन तेरे नाम जिसमें उनका नाम राधे है।
3: वांटेड। वांटेड।
0: वांटेड की फीमेल लीड का नाम क्या है?
3: आयशा टाकिया।
0: ग्रेट। आयशा टाकिया की फिल्म जिसमें आत्मा कार चलाती है।
3: टार्जन द वंडर कार।
0: ग्रेट। टार्जन में भूत किसका होता है?
3: अजय देवगन।
0: अजय देवगन किस फिल्म में अपनी बीवी को उसके लवर से मिलवाने ले जाते हैं?
3: हम दिल दे चुके सनम।
0: ग्रेट। हम दिल दे चुके सनम में सलमान की लवर कौन है?
3: ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या राय की हिंदी फिल्म जिसमें वो चोर बनी है?
3: धूम।
0: कौन सा पार्ट?
3: ये सेकंड जो ऋतिक रोशन के साथ तो था।
0: धूम टू में हर लड़की के साथ शादी कौन इमेजिन कर लेता है?
3: क्या है उसका नाम, चोपड़ा कुछ उपरा है ना, वो हाँ। जो उसके साथ होता है बंदा, व्हाट हिज नेम, अभय, अजय, क्या चोपड़ा यार।
0: कोई बात नहीं यार, बट इतना अच्छा जो आपने इस गेम को यहाँ तक पहुँचाया उसके लिए आपको ये टैग देना तो बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो भाई आदि तो गेस नहीं कर पाए कि आफ्टर ऑल उस एक्टर का नाम क्या है। अगर आपको पता है देन यू नो द ड्रिल। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू इट्स टाइम टू फाइंड मिर्ची फिल्मची। एक तो मिल चुका है लेकिन दूसरे की खोज है जारी। सो बेसिकली आई वॉज इन कॉन्वर्सेशन विद आदि और उन्होंने इस गेम को एक लेवल तक पहुंचाया, बट उसके बाद मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। तो आदि जहां से अटके थे उसके आगे का गेम खेलने के लिए मेरे साथ हैं पुनीत जी। तो फिर क्या ये गेम आगे कंटिन्यू करूं आपके साथ?
2: यस यस श्योर।
0: ओके, तो धूम 2 में हर लड़की के साथ शादी कौन इमेजिन करता है?
2: उदय चोपड़ा।
0: उदय चोपड़ा की फिल्म जिसमें परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन सिखाया जाता है?
2: मोहब्बतें।
0: में वायलिन कौन बजाता है?
2: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें वो टूरिस्ट गाइड बने हैं?
2: हैरी मेट सेजल।
0: जब हैरी मेट सेजल में फीमेल लीड कौन है?
2: अनुष्का शर्मा।
0: अनुष्का शर्मा की फिल्म जिसमें वो कौन वुमन बनी है?
2: बदमाश कंपनी।
0: बहुत बढ़िया। बदमाश कंपनी में मास्टरमाइंड कौन होता है?
2: शाहिद कपूर।
0: शाहिद कपूर की फिल्म जिसमें उनका डबल रोल है, जो हम जनरली अपने दोस्तों को भी बुलाते हैं?
2: कमीने।
0: गुड वन सर, गुड वन। कमीने की फीमेल लीड कौन है?
2: प्रियंका चोपड़ा।
0: प्रियंका चोपड़ा की फिल्म जिसमें वो कैबरे डांसर हैं और दो बेस्ट फ्रेंड्स उनसे प्यार कर बैठते हैं?
2: रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर की मूवी है वो।
0: हाँ हाँ।
2: गुंडे।
0: बहुत बढ़िया। गुंडे फिल्म का कौन सा हीरो खिलजी का रोल प्ले कर चुका है?
2: रणवीर सिंह।
0: रणवीर सिंह की उसी फिल्म का नाम क्या है जिसमें उन्होंने खिलजी का रोल प्ले किया है?
2: पद्मावत।
0: पद्मावत में पद्मावती का रोल किसने प्ले किया है?
2: दीपिका पादुकोण।
0: दीपिका पादुकोण की फिल्म जिसमें व्हाट हैपेंस इन कॉर्सिका स्टेज इन कॉर्सिका, ये वाला डायलॉग है?
2: तमाशा।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया आपके साथ ये गेम खेल के, इट वॉज लवली। तो इसी बात पे आपको ये टैग भी दे ही देती हूँ।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: वेल, तमाशा पे हमने एंड किया था। अगर आपको ये गेम वाला तमाशा मेरे शो पे पसंद आता है तो मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके अपना नंबर भेजो ना। बाकी की चीजें आई विल टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शंकर महादेवन,
3: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग. तो हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
4: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, टू पुट दिस सनस्क्रीन, नॉट सनस्क्रीन, द वन व्हिच यू यूज फॉर द स्पॉटिंग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट सनस्क्रीन थिंग इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी.
2: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
1: Only on Mirchi, it's hot.
5: 89.6, 89.6,
6: it's hot.

0: ये गाने सिर्फ गाने नहीं हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ जी बाबू मोशाय, देखो जिंदगी में टाइम एंड अगेन हम किसी ना किसी सिचुएशन के थ्रू जा रहे होते हैं, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, लेकिन इन सारी सिचुएशंस को समझाने के लिए कुछ गाने हैं जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू हमें मिले हैं, जिनको अप्रिशिएट करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे उस सिचुएशन के लिए वो गाना कुछ ज्यादा ही एप्ट बैठता है। तो बस आज का पंच की लिस्ट इन्हीं गानों को डेडिकेटेड है, जिसमें सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फिल्म हाईवे से अबाउट द सॉन्ग पटाखा गुड्डी। वेल अबाउट द मूवी, ये 2014 में रिलीज हुई थी, स्टारिंग आलिया भट्ट एंड रणदीप हुडा एज लीड्स, डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली। म्यूजिक इस मूवी का है AR रहमान द्वारा और लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने, और क्या ही लिख दिया है यार इस गाने में उन्होंने कि मालिक ने जो चिंता दी तो दूर करेगा वो ही। और कसम से ये गाना कितना सेंस बनाता है ना, जब आप हंसे पड़े होते हैं तो आपको लगता है कि यार कोई रास्ता ही नहीं है, बट उस वक्त हमें समझना चाहिए, याद रखना चाहिए कि अगर हमारी जिंदगी में ये सिचुएशन आई है देन ऑफ कोर्स वी आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। बस थोड़ा सा दिमाग शांत करके अपने आप को उस रास्ते पे लेकर जाना है और बस देखना वो रास्ता कब खत्म हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। वेल कुछ ऐसे ही चार और गाने डिस्कस करना बाकी है इन माई पांच का पंच लिस्ट, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल। अभी के लिए यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।

0: Mirchi. Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La virpa la burka.
0: Mirchi, burka.
2: हेलो
3: हेलो बेटा नवनीत,
2: आप कौन?
3: पापा कहाँ हैं?
2: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
3: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे, कभी उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
2: लेकिन आपको काम क्या है?
3: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
2: पापा ने कहा था?
3: चुप कर। पापा ने कहा था मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
2: क्या हुआ अंकल?
3: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
2: अब मुझे क्यों डांट?
3: चुप कर।
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
3: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा था तूने?
2: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
3: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
2: लेकिन बुरी क्या
3: लगी? अंकल कल देखो एक मारूंगा।
2: बदतमीजी क्या करी?
3: अच्छा ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
2: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
3: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
2: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
3: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
2: क्या बोलूं?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूं, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
2: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
3: चुप कर। मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। लेकिन आप तो समझदार हैं बाबू मोशाय, इसलिए तो आज का पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे गानों की डिस्कशन कर रही हूँ जो हमारी जिंदगी में समझदारी भरते हैं। हाँ, तो लिस्ट में सबसे पहले वी डिस्कस्ड अबाउट द सॉन्ग पटाखा गुड्डी फ्रॉम द मूवी हाईवे, और अब नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट कोक स्टूडियो 14 का गाना तू झूम जो आया था इन द ईयर 2022। सिंगर्स हैं आबिदा परवीन एंड नसीबुलाल, लिरिक्स हैं इस गाने के जुल्फिकार जब्बार खान और अदनान धूल के, म्यूजिक दिया है जुल्फी एंड अब्दुल्ला सिद्दीकी ने, और भाई साहब इस गाने का एक एक लाइन आपके दिल में ऐसे जाके लगता है कि क्या ही बताओ, स्पेसिफिकली दिस वन।
1: समझ के की करना है, दिल नो है समझावा तू झूम।
0: सबको समझ के क्या ही कर लेंगे, अपने दिल को ये चीज समझा लो, इसमें ही समझदारी है बाबू मोशाय, क्योंकि लोगों को जो सोचना है आपके बारे में वो सोचते रहेंगे। आप कितनी ही मेहनत कर लो अपनी इमेज बदलने की, सामने वाले को विश्वास दिलाने की अबाउट थिंग्स दैट यू बिलीव इन, बट ऐसा होगा नहीं। इसलिए बेटर ये है कि दूसरों की चिंता किए बिना अपनी जिंदगी चलाते रहो। मूविंग ऑन इन द लिस्ट, नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट फिल्म तमाशा से सफरनामा गाने के बारे में। भाई भाई, 2015 में आई थी ये मूवी, डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली अगेन। म्यूजिक इस मूवी का है एआर रहमान द्वारा, लिरिक्स हैं इरशाद कामिल के, और इस गाने को गाया है लकी अली ने। स्पेसिफिकली दिस लाइन जस्ट टेक्स अवे माय हार्ट।

ऐसा होता है ना कि हम पूरी दुनिया में चैन सुकून ढूंढना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जब तक आपका दिल आपका मन शांत नहीं होगा आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। सो ऑल इन ऑल बाबू मोशाय, जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं उसकी शुरुआत अपने अंदर से करो। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: ये गाने नहीं आपकी जिंदगी के सल्यूशन है बाबू मोशाय। श्रुति श्रुति
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: तो हमारी जिंदगी में कई सिचुएशंस होती हैं और हर सिचुएशन के लिए कोई ना कोई गाना बिल्कुल एप्ट बैठता है। तो अगर आपकी जिंदगी में फिलहाल नेगेटिव सिचुएशंस चल रही हैं तो बाबू मोशाय आज का पांच का पंच की लिस्ट बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आई एम डिस्कसिंग अबाउट सच हिंदी सॉन्ग्स जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें समझ देते हैं। इन द लिस्ट सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट पटाखा गुड्डी गाना फ्रॉम द मूवी हाईवे। नंबर दो पे हमने तू झूम की बात की फ्रॉम कोक स्टूडियो 14। नंबर तीन पे वी टॉक्ड अबाउट तमाशा से सफरनामा सॉन्ग के बारे में। और अब बारी है नंबर चार पे टू टॉक अबाउट फिल्म पीकू से जर्नी सॉन्ग के बारे में बाबू मोशाय। वेल, ये मूवी डायरेक्ट की सुजीत सरकार ने जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2015, जिसमें अमिताभ बच्चन, इरफान खान और दीपिका पादुकोण लीड रोल्स में थे। About the music, अनुपम रॉय का अल्टीमेट म्यूजिक है, लिरिक्स भी उनके ही हैं अलोंग विद मनोज यादव। और अगर जर्नी सॉन्ग की पर्टिकुलरली बात करें तो आवाज है अनुपम रॉय, श्रेया घोषाल, अनुज गुरवारा और एस जानकी की। एंड भाई, इस गाने का ये वाला लाइन जो है ना,
2: वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिश अनजान है अब क्या करें,
0: वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे। भाई, यही तो फलसफा होना चाहिए ना हर इंसान की जिंदगी का, कि जितना भी वक्त है उसको इस तरीके से जियो मानो वो आखिरी पल हो आपका, और अगर दर्द है तो उस पे मरहम करो, वरना नासूर बनते उसको देर नहीं लगेगी। वेल, मूविंग ऑन इन द लिस्ट, नंबर पांच पे लेट्स टॉक अबाउट द सॉन्ग मांझा फ्रॉम द मूवी काई पोचे, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2013, डायरेक्टेड बाय अभिषेक कपूर। मूवी के लीड्स थे सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव एंड अमित साड। म्यूजिक है अमित त्रिवेदी का, लिरिक्स है स्वानंद किरकिरे के। एंड टॉकिंग अबाउट दिस सॉन्ग, अमित त्रिवेदी और मोहन कनन ने क्या जस्टिस किया है इस गाने के साथ यार, स्पेसिफिकली गाने का ये पार्ट।
3: रिश्ते पंखों को हवा देंगे, रिश्ते दर्द को दवा देंगे, जीत कभी
0: रिश्ते पंखों को हवा देंगे, रिश्ते दर्दों को दवा देंगे। हमारी जिंदगी में ये जो रिश्ते होते हैं ना, वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए सही रिश्ते बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके अप्स में तो सब खड़े होते हैं, असली रिश्ते तो तब पता चलते हैं जब आपका डाउनफॉल होता है। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। वैसे मेरी इस लिस्ट में अगर आप भी कुछ ऐसे ही गाने ऐड करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट। यहाँ के अलावा कनेक्ट कर सकते हैं ना फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे, आई एम देयर विद द नेम MIRCHISHRUTI, यानी मिर्ची श्रुति। इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स ऑल।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सब

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPE. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.

तुमसे मिलके मैंने जाना ये प्यार भी अजीब चीज है। इंसान खुद को भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है?

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। रिजेक्टेड बाई टॉक्सिक, डिलेड बाई स्पाइडरमैन, और शुरुआत हुई थी इस फिल्म को लेकर एक बोगस ऑफर के साथ, बट आज इसी मूवी ने हिस्ट्री क्रिएट कर रखी है। बात कर रही हूँ हनुमान अंश की। हांजी, जो फिल्म तैयार हुई 2 करोड़ के बजट पे, बट आज इस फिल्म ने अबाउट 80 करोड़ तक कमा लिए हैं ऑन द बॉक्स ऑफिस। इसी को बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ, कितना पावरफुल हो सकता है यार, क्योंकि ये 5th वीकेंड रन चल रहा है इस मूवी का, और ऐसा ही रहा तो इसे 100 करोड़ क्लब में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। माइंड यू द मूवी रिलीज्ड ऑन द 31st of July। अगर अभी तक आपने नहीं देखी, देन ऑफ कोर्स इसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स की वजह से ही देखने चले जाओ कम से कम। भाई, ये नाम को लेकर कितना बवाल होता है ना हमारे यहाँ, लेकिन सब भूल जाते हैं शेक्सपियर अंकल ने बोला है व्हाट्स देयर इन नेम। एक्चुअली क्या हुआ, 4th of September को रिलीज हुई अरशद वारसी की फिल्म जीवन बीमा योजना, ये तो पहले उसका नाम था, नाम चेंज करके किया गया जीवन या बीमा कौन। सो बेसिकली इस नाम के ऊपर इसलिए कॉन्ट्रोवर्सी हुई क्योंकि CBFC ने बोला कि भाई फिल्म का नाम जो है हमारे प्रधानमंत्री की जीवन ज्योति बीमा योजना से काफी सिमिलर है, तो इसको तो चेंज किया जाए। सिर्फ उतना ही नहीं, मूवी में कुछ ऑब्सीन विजुअल्स और डायलॉग्स भी हटाए गए। माइंड यू, इट इज अ क्वर्की कॉमेडी जो 1 घंटे 59 मिनट्स के रन टाइम के साथ आई है, जिसमें अरशद वारसी के अलावा संजीदा शेख और विजय राज जैसे और भी एक्टर्स हैं। हरीश व्यास डायरेक्टोरियल इस फिल्म के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि इसमें ना फादर सन के अल्टीमेट कॉम्बो को दिखाया गया है। हरीश व्यास की इस फिल्म का नाम है ओम का हरी, जिसका ट्रेलर इज आउट, और अगर आपको एक ओवरव्यू लेना है तो प्लीज देखिए ये फिल्म। इट इज अ स्मॉल बजटेड मूवी जिसमें बहुत बड़े बड़े सितारों के नाम नहीं है, बाकी ट्रेलर देखे मैं तो काफी इंप्रेस्ड हूँ टू वॉच द मूवी इन थिएटर्स जो आ रही है 18th of September को। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। सो टू ऑल द समय राणा फैंस आउट देयर, अगर आपने उनके कमबैक वाले एपिसोड को देखने के बाद अपने पापा को आई लव यू बोलने की शुरुआत कर दी थी, then I guess it's high time कि आप ऐसी फिल्मों को भी सपोर्ट करें। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: कुमार शानू, आपके हिसाब से आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे?
2: मेरा कॉलिग के बारे में मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, मैं ना बोलना चाहता हूँ। हमारे जो कॉलिग्स थे, दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स, अलग अलग अपना पहचान बनाया, जो आज के सिंगरों में है नहीं, पहचान है नहीं किसी का, एक ही टाइप का सिंगर आपको 6 मिल जाएगा।
1: वेयर इज द लाई कुमार शानू, वेयर इज द लाई? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची वन. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं तीन.
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

हीरोइन को पाने की चाहत में हीरो ने अपनी इच्छा को साइडलाइन कर दिया। कितने आदमी थे भाई, याद आया? मैं बात कर रही हूँ अबाउट द मूवी शोले, जो 1975 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय रमेश सिप्पी। और इस मूवी में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र पाजी, जया बच्चन, अमजद खान और संजीव कुमार जैसे अमेजिंग एक्टर्स थे। एंड यू नो व्हाट, इस मूवी की फाइनल स्क्रिप्ट सुनने के बाद धर्मेंद्र जो है वो ठाकुर का रोल करना चाहते थे, बिकॉज ही न्यू कि ठाकुर और गब्बर जो है वो इस मूवी के स्टोरी के सेंट्रल पॉइंट्स हैं। बट फिर डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने क्लेवरली धर्मेंद्र पाजी को कन्विंस किया कि भाई देख ले, अगर तू ऐसा करेगा तो वीरू का किरदार मिलेगा संजीव कुमार को, और मूवी के एंड में संजीव कुमार हेमा मालिनी को लेके चले जाएंगे। माइंड यू, धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी का रोमांस उस वक्त नया नया था, और उसके पहले संजीव कुमार ने ऑलरेडी हेमा मालिनी को एक बार प्रपोज कर रखा था। तो भाई इन सारी चीजों के मद्देनजर धर्मेंद्र पाजी ने अपने वीरू वाले कैरेक्टर के साथ सेटिस्फेक्शन दिखाई और ठाकुर के कैरेक्टर को संजीव कुमार के पास ही छोड़ दिया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। बाकी ऐसे ही किसी फिल्म के बारे में आपको भी कोई ट्रिविया जाननी हो तो उसका नाम मुझे बताओ, आई विल डू द होमवर्क फॉर यू। कनेक्ट करने के लिए MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या फिर इंस्टा पे मिलो। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स

0: Milci.
1: Iscabana, Buscabana, Sacabana, Cabana, Burga, Burga, la Virva, la Burga, Milci, Burga.
2: Hello?
3: Hello?
2: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज़।
3: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
2: हाँ जी।
3: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
2: अच्छा अच्छा,
3: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
2: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
3: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर, रमेश इसे बंद कर दे। यार आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले ही।
2: मैं
3: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन, यार इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
2: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
3: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
2: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
3: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
2: चोरी करने ले गया,
3: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
2: यहाँ पे ड्रिल मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा, मुझे फंसवाएगा।
3: एक बात सुन,
2: तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया।
3: बात सुन।
2: हेलो
3: यार, कमाल है आप तो, मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
4: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
2: कहाँ से बोल रहे भैया?
4: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
3: अब ठीक है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
6: it's hot.
7: The show was absolutely amazing.
8: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
9: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoono. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah, live.

मिर्ची पिटी उंडन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। और नॉर्मल खड़े होना कुछ लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए दो कैटेगरी ऑफ पीपल व्हेन स्टैंडिंग की बात करना चाहती हूँ। तो अगर आप नीचे चाय वाय के लिए जाओगे, अपने आसपास लोगों को देखोगे, तो कुछ लोग ना दोनों पैरों पे भार देके अपनी बॉडी का खड़े होते हैं, मतलब स्ट्रेट खड़े होते हैं। और कुछ लोग क्या होता है कि एक पैर पे ज्यादा स्ट्रेस दे देंगे और उनका बॉडी पॉस्चर जो है थोड़ा लीन होता है। मिर्ची पिटी उंडन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। और नॉर्मल खड़े होना कुछ लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए दो कैटेगरी ऑफ पीपल व्हेन स्टैंडिंग की बात करना चाहती हूँ। तो अगर आप नीचे चाय वाय के लिए जाओगे, अपने आसपास लोगों को देखोगे, तो कुछ लोग ना दोनों पैरों पे भार देके अपनी बॉडी का खड़े होते हैं, मतलब स्ट्रेट खड़े होते हैं। और कुछ लोग क्या होता है कि एक

मतलब ये इंसान ना स्थिर नहीं हो सकता, इसके बॉडी में कोई ना कोई मूवमेंट जरूर रहती है, जस्ट लाइक अ रॉकिंग चेयर व्हेन यू सिट ऑन इट। तो बताइए आप इन दोनों में से किस कैटेगरी के हैं? मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके ये बातें कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: ये तो थ्रिलर बोल के मजाक कर दिया बे।
1: OTT एंड चिल।
0: फिल्म रन याद है आपको? उसमें किस तरीके से विजय राज के कैरेक्टर को छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया गया था और बिरयानी के नाम पे कौवा बिरयानी खिलाई गई थी, ठीक वैसे ही वाली फीलिंग आई है इस मूवी के साथ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट OTT पे रिसेंटली आई फिल्म गांधारी, जिसको डायरेक्ट किया है देवाशीष मखीजा ने और इसमें हमारी तापसी पन्नू इज एज द लीड। सो फिल्म का बैकड्रॉप है चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जहां तापसी पन्नू एज अ मदर loses her child, I mean वो किडनैप हो जाती है और फिर ये माँ अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए एडी चोटी का जोर लगाती है। बस प्रॉब्लम ये है कि माँ अचानक से ना देख नहीं पाती क्योंकि उनको चोट लग जाती है और जो ट्रॉमा उनके आंखों पे है उसकी वजह से उनका विजन चला जाता है, विच इज अ टेम्पररी थिंग, धीरे धीरे इट कुड बी रीगेन्ड फॉर श्योर। बट उस हालत में ये माँ जो है इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग के गढ़ तक पहुंचती है बाई डिफरेंट मीन्स और जो अल्टीमेट विलन होता है ना उसको दबोच लेती है। बट यार इन सारी चीजों को दिखाने का जो तरीका है ना बड़ा कैजुअल सा लगा मुझे, मतलब द मूवी इज फुल ऑफ ट्रिक्स। एक महीने में बंदी तैयारी कर ले रही है कि भाई बिना देखे भी मैं लोगों को फाइट कर सकती हूँ और मेजर एक्शन कर सकती हूँ, फिर अगले महीने से वो अपने इसी टास्क की शुरुआत भी कर देती है। देखो ऐसा नहीं है कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने पहले चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेके कोई फिल्म या कोई सीरीज नहीं बनाई, हाउ कैन वी फॉरगेट मर्दानी, बट वहाँ कहानी सॉलिड थी, परफॉर्मेंसेस सॉलिड थी और चीजें ना एक्चुअली आपस में वीव हो रही थी। बट यहाँ पे सब कुछ तितर बितर चल रहा है यार। तो इस फिल्म के ऊपर अपने घंटों बर्बाद करने से अच्छा है कि आप सीरीज अनचोजन देखें, विच इज ऑल्सो करेंटली स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

एक मर्द बना था पूजा भट्ट का स्टंट डबल। मिर्ची पे ट्यून इन हुआ, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, एंड यस यू हर्ड इट राइट। बेसिकली मैं बात कर रही हूँ धुरंधर के एक्शन डायरेक्टर एजाज गुलाब के बारे में। सो उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में रिवील किया कि फिल्म जख्म जो 1998 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय महेश भट्ट, जिसमें पूजा भट्ट नागार्जुन और अजय देवगन के साथ लीड रोल्स निभाती नजर आई थी, उस फिल्म में एक फायर सीक्वेंस था जिसमें पूजा भट्ट की जगह पे एजाज गुलाब ने उनका स्टंट डबल बन के वो सीन शूट किया था। ऑल्दो ये सीक्वेंस ही फिल्म से डिलीट कर दिया गया, बट Yes, एक मर्द बोले तो एजाज गुलाब बने थे पूजा भट्ट के स्टंट डबल, which was quite a normal thing back then, क्योंकि उस वक्त फीमेल स्टंट डबल्स की कमी हुआ करती थी, एंड दिस इज हाउ थिंग्स यूज्ड टू वर्क। तभी मैं कहती हूँ बड़े पर्दे पे जो कहानियां हम देखते हैं उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां होती हैं जो मैं ढूंढकर आप तक लेकर आती हूँ। तो अपनी फेवरेट फिल्म का नाम मुझे बताइए मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके, एंड आई विल डू द होमवर्क फॉर यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: इंडियन एक्टर्स में से अक्षय कुमार इज द प्रैंकस्टर ऑन सेट। अगर सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल से पूछते हैं।
3: उदित नारायण आई वुड से यू नो ही वाज मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर देन अ सिंगर बट अ वेरी लवेबल प्रैंकस्टर एंड ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड पासिंग सम कमेंट्स मेकिंग एवरीबॉडी लाफ।
2: ये थी अनुराधा पौडवाल टॉकिंग अबाउट द वन द ओनली सर सर सर सर उदित नारायण ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
6: द मेंटेनेंस सुहानी शाह लाइव.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: इतनी गर्मी है यार, उसमें एसी नहीं चल रहा। लैंडलॉर्ड को कितनी बार बोला, रिपेयर ही नहीं करवाता, क्या करूँ?
1: एसी नहीं चल रहा तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा? सिंपल है, एयर लॉर्ड को बोलो, एयर लॉर्ड, ठीक है?
2: साले को खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले।

0: मम्मा माशू का गई और आ गया आपका आशिक नाम है।
1: मस्त मौला गौरव
0: आपके साथ। मिर्ची घड़ी की बात करें तो शाम के 4:04।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: समावार पियो चाहे सुलेमानी, ऐसे मौसम में कड़क की बात अलग है मेरे जानी। एंड इतना ही कहना चाहता हूँ, मौसम चाहे जैसा भी हो, हमें और आपको हमारे कतर में एक अच्छी कड़क अगर मिल गई तो हमारा सारा टेंशन दूर हो जाता है। मतलब चाय के टाइम पर ना हमें किसी तरह की कोई और चीज़ अच्छी नहीं लगती है। वैसे अब से थोड़ी देर पहले मैंने एक बेहतरीन पी और मुझे यही लगा यार कि कभी कभी जिंदगी में छोटी चीज़ें भी ना आपको जिंदगी का सबसे बड़ा किक दे देती है। ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसे होता है तो भाई थैंक यू कतर, जहाँ पर लोग कड़क को लेकर, चाय को लेकर इतने ज्यादा एक्टिव रहते हैं और जब पूछ लो मना करते ही नहीं है। अगर मना करते तो आप मेरी कैटेगरी वाले हैं भी नहीं। इन सब के बीच आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे क्योंकि कतारा इंटरनेशनल हंटिंग एंड फाल्कनरी एग्जीबिशन साइल 2026 इज ऑल अबाउट टू लॉन्च टुमारो, और इसके बाद और क्या क्या खास हो रहा है कतर के कोने कोने में सब बताएंगे। 89.6 मिर्ची 1 पर कान लगा के सुनते रहो मिर्ची थॉट। शाम शानदार की शुरुआत हो गई है।

0: Energy. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na viva la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: कौन?
2: हेलो।
1: हाँ बोलो, कौन?
2: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
1: हाँ बोल, कौन रहा है?
2: बोल कौन रहे हो? कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की। नीचे से बोल रहा हूँ, आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
1: बोल कौन रहे हो?
2: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
1: हाँ बोला था।
2: ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने।
1: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर?
2: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
1: हाँ बोलो।
2: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर। ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने।
1: कौन बोल रहा है, कहाँ घुस गए यार?
2: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
1: हाँ हाँ बोला था। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ।
2: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर।
1: कब आया था, कब घुसा अंदर?
2: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
1: तो कहाँ से रहा है? तो नहीं हो गया है?
2: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
1: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
2: ऑफिस क्यों गए? सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
1: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और की सीवर में घुस गया?
2: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
1: सीवर में मरा रहा है तू?
2: गाली तो मत दो।
1: हेलो
2: हेलो,
1: फिर फोन कर दिया तूने?
2: अच्छा है, सीवर साफ होने का काम करो। एक चीज बोलो।
1: क्या बोलो?
2: कुकड़ू को
3: सर, आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या है?
1: कुकड़ू को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीडी स्नूनू। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
8: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Strawberry Banana Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good. Pizza partner Papa John's. Qatar, are you ready for the new pan pizza from Papa John's? Crispy garlic parmesan crust, Italian seasoning, 6 cheese blend and cheese edge to edge. The new standard of pan in Qatar at Papa John's. Order now.
9: Healthcare partner Kim's Health Medical Center, a multi-speciality medical center located in Al Wakra, Al Mishaf and Barwa City. Kim's

आ गया आ गया आ गया, अपने सपनों को सच करने का वक्त आ गया। 89.6 मिर्ची 1 पर मिनिस्ट्री ऑफ एंडोमेंट एंड इस्लामिक अफेयर्स ने अनाउंस कर दी है रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजन एंड रेसिडेंट्स जो हज 2027 का हिस्सा बनना चाहते हैं, साल 2027 में हज करने जाना चाहते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खुला है। यस, सितंबर 20th संडे से यह शुरू होगा और अक्टूबर 20th ऑलमोस्ट एक महीना हज पोर्टल पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यस, रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजन एंड रेसिडेंट्स दोनों के लिए खुल जाएगा 20th of September to October 20th। वो टाइम जब हम ये मानते हैं कि ऊपर वाले की इबादत में टाइम निकालेंगे और हज पर जाकर हाजी बनेंगे। लेकिन इस बार का कोटा 4400 पिलग्रिम्स का है, यानी कि हज यात्री सिर्फ 4400 हैं और आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट मैंडेटरी पहला स्टेप है जो एप्लीकेंट्स को देना ही देना है। एंड इसके अलावा आप हेल्थ सेंटर्स पर जाकर मेडिकल असेसमेंट कराकर जो इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड आएगा उसमें से आपको जो रिपोर्ट मिलेगी वो जाकर सबमिट करनी है। एंड याद रखिए, रेसिडेंट्स एंड जीसीसी सिटीजंस कम से कम 45 ईयर ओल्ड होने चाहिए एंड इससे पहले कभी हज परफॉर्म करने नहीं गए हो। और तो और, अगर आप कंटिन्यूअस रेसिडेंट हैं इन कतर फॉर एटलीस्ट 15 इयर्स तो एक और कंपेनियन आपके साथ जरूर ऐड हो जाएगा। बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता लग जाएगा, लेकिन दोस्तों इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके पास वो मौका है जब आप ऊपर वाले की इबादत के लिए जाएंगे एंड हम सब के भी दुआएं कर कर आएंगे। चलिए जी, इस उम्मीद से कि आप अगली हज यात्रा का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और मसमोला गौरव ने अपनी तरफ से थोड़ा नेकी का काम किया, आगे बढ़ते हैं। दुआ में याद रखिए 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: दिल झूम झूम जाए, अरिजीत सिंह मिथुन की आवाज में गाए। लेकिन मेरा दिल तन बदन सब झूम जाता है जब फर्स्ट को सैलरी का मैसेज आता है, लेकिन जैसे जैसे ये निकलने लगती है दिल धड़कना धीरे धीरे और तेजी से शुरू कर देता है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपकी सैलरी आई है एंड आप इनका सही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ अल फरदान एक्सचेंज के गोल्ड रेट्स अपडेट।
1: गोल्ड अपडेट
0: वेल, अगर बात करें पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार राइट नाउ एट 593 कतारी रियाल, पैम्प 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 2781 कतारी रियाल, 10 ग्राम आपको मिलेगा 5492 कतारी रियाल में, 1 आउंस गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 16980 कतारी रियाल एंड 10 तोला गोल्ड बार ऑफ पैम्प आपको मिलने वाला है 63061 कतारी रियाल में। एंड अगर राइट इन्वेस्टमेंट चाहिए एकदम सही, जब चाहे तब उसको हम वापस कर पाए एंड मेरे पास लिक्विड मनी है, आई ऑलवेज बिलीव इन इन्वेस्टिंग गोल्ड, क्योंकि पैसा जब चाहिए खटाक से मिल जाता है। अल फरदान एक्सचेंज का ये था गोल्ड रेट मिर्ची थॉट।
2: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardhan Exchange, PAMP's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAMP gold bars
3: and earn Qatar Airways Avios today.
2: Visit our branches or download the app now.

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: रेडी
6: रेडी
5: टू लर्न
6: यस
5: टू प्ले
6: एब्सोल्युटली
5: टू ग्रो
6: विद मेज़राती।
7: The school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
6: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
7: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
8: The show was absolutely amazing.
9: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: टशर जो सन डरुलो की आवाज में जलेबी बेबी सुनाया किसने बेबी लेकिन सूरज चाचू को अब सुनाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब इनको दया आ जानी चाहिए थी लेकिन नहीं आ रही तो नहीं आ रही, धीरे धीरे एक दिन मान ही जाएंगे और टेम्परेचर नीचे ले ही आएंगे।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: ये तो मतलब हद्दी हो गई। अब देखिए आप 7th of September की तारीख शाम के लगभग 5 बजने को आए लेकिन टेम्परेचर अभी भी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। दिन का मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस गया था, मिनिमम अराउंड 33 आएगा और चमकान सूरज चाचू के साथ साथ ह्यूमिडिटी का पारा जो है वो भी बढ़ा हुआ है, पर हमें घबराना नहीं है। 31% ह्यूमिडिटी हमारा बाल विवाह नहीं कर पाएगी अगर हम पानी पीते रहेंगे। कीप हाइड्रेटिंग योर बॉडी, कीप ड्रिंकिंग वाटर और शाम और सुबह में मौसम जब अच्छा हो तो थोड़ा वॉक कीजिए जिससे आपका ये बाहर आता पेट थोड़ा सा अंदर जाएगा, आपको अच्छी फीलिंग आएगी। इस उम्मीद से कि आप अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 89.6 मिर्ची वन, वन ऑफ माय फेवरेट्स ऑफ ऑल टाइम, हरिहरन स्वर्णलता। हाय रामा, ये क्या हुआ? इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
2: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ गाना। रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए। दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, क्यों

0: हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से।
1: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए, मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: हेलो सर, मेरी फोटो में ना कभी भी स्माइल अच्छी नहीं आती।
2: oh, no.
0: क्या करूं?
1: बेबी डॉल, स्माइल फोटो में नहीं, होटो पे अच्छी लगती है।
3: खोपड़ी तोड़।

0: विशाल मिश्रा की आवाज में तबाही, लेकिन तो हम तो आपके भाई हैं। फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम बताएंगे भाई, 5:04।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: नहीं नहीं आज तो सर आए नहीं, आप ऐसा करिए कल अपना लेके आइए वाला पेपर, देखते हैं क्या हो सकता है। और इस चक्कर में कल परसों करते करते आपने सरकारी बिल्डिंगों में न जाने अपनी कितनी चप्पल घिसवा दी होगी। ऐसा बहुत बार होता था कि आपका छोटा सा काम कम से कम 10-15 बार बाबू के चक्कर लगाने के बाद होता था, लेकिन डिजिटल दुनिया में चीजें बदल रही है और हमारे कतर में तो ये अब बहुत तेजी से बड़ी होती जा रही है। एंड एकदम काम की खबर हम आपके पास लेकर आए, अगर आप पेट लवर हैं या फिर एनिमल बिजनेस से जुड़े हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने आपके लिए चीजें और आसान कर दी है। एक दो नई पूरी 38 नई सर्विसेज को अपने उन ऐप में शामिल कर लिया है मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने। हाँ जी, अब इससे क्या होगा, बड़ा ही सिंपल है, सब कुछ डिजिटल और सब कुछ आसान हो जाएगा। जैसे अगर आप बाहर से कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेस, फाल्कन्स या फिर रेसिंग कैमल्स लाना चाहते हैं तो उनका इम्पोर्ट परमिट अब आपको उन ऐप पे मिल जाएगा। इतने नहीं, एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक टेबल एग्स, ऑर्नामेंटल फिश, वाइल्ड बर्ड्स, इन सब का परमिट भी आपको अब एक क्लिक पर मिल जाने वाला है। और सिर्फ इम्पोर्ट नहीं सर, एक्सपोर्ट के लिए भी जो वेटनरी हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता ना, वो भी अब आपको इसी उन ऐप पे मिल जाएगा। पहले जिसके लिए आप ऑफिसेस के चक्कर लगाते थे, इंतजार करते थे कि कोई बाबू साहब आए हमारा काम कर दें, अब वही काम आपके फोन पर एक बार में घर बैठे बैठे हो जाएगा और जैसे ही सर्टिफिकेट आ जाए आपका काम डन। तो अगर अब आपको ऐसी सर्विसेज चाहिए तो ऊन ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ना इसमें एक और बड़ा फायदा होता है, अगर आपको कतर के किसी भी पार्क में जाना है जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी फीस लेती है, वो हो सकता है आप पार्क्स में लगे उस बारबेक्यू एरिया को भी बुक कर सकते हैं इसी ओन ऐप के जरिए। तो जरूर डाउनलोड कीजिए एंड डिजिटलाइज होती इस दुनिया का हिस्सा बन जाइए, जहां एक क्लिक पर सारा काम होता है, चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
1: आई एम वेरी फाइन, थैंक यू।
2: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
1: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ,
2: नहीं वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो,
1: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
1: मतलब गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो,
1: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए, ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट,
1: पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट।
2: देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह। आओ मिलो,
1: आओ मिलो
2: शिलो शालो,
1: शालो
2: कच्चा धागा,
1: कच्चा धागा
2: रेस लगा लो,
1: रेस लगा लो,
2: दस पत्ते तोड़े,
1: दस पत्ते तोड़े,
2: एक पत्ता कच्चा,
1: एक पत्ता कच्चा।
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे। दस पत्ते तोड़े
1: तोड़े
2: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
1: दस दस दस पत्ते तोड़े,
2: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा।
1: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा।
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
1: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को, मिस्टर श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
1: यार ये कुछ सुनेगा
2: सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं। अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
5: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snoo Noo। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

अरे मामा बकलावा कुनाफा बटवाओ, ये तो खुशखबरी है। हबीबी गुल्ला गुल्ला ध्यान से सुनिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अर्ज कर दिया है और हमसे कहा है कि एक्सटेंड करना चाहते हैं अगर आप ऑन अराइवल वीजा, रिन्यू करना चाहते हैं अगर आप ऑन अराइवल वीजा, तो अब आप इसके लिए बिल्कुल जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट या सर्विस सेंटर्स पे मत जाइए, ये सब वेबसाइट पे हो जाएगा। यस, मिनिस्ट्री ने कहा है कि वीजा एक्सटेंशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होगा, कुछ MOI की वेबसाइट पर जाकर कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है एंड उसके बाद आपका आसानी से काम हो जाएगा एंड आपका वीजा एक्सटेंड हो जाएगा। अगर आपको रिन्यू कराना है तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए MOI.gov.qa पे जाना है, उसके बाद इंक्वायरीज को सेलेक्ट करना है, फिर वीजा सर्विसेज को और वीजा एक्सटेंशन फॉलोड बाय इंक्वायरी एंड एक्सटेंशन, बस ये प्रोसेस और आपका काम पूरा। यस, इसमें आपको जो डिटेल्स भरनी है वो ध्यान से भरिएगा एंड इतना समझ लीजिए कि जिसके लिए पहले चक्कर लगाएंग होता था वो अब आपके लिए ऑनलाइन बैठे बैठे काम हो जाएगा एंड जो भी फीस है वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली पे कर देनी है एंड सारा कंप्लीट करने के बाद प्रोसेस आप इंतजार कीजिए और जैसे ही आपका वीजा रिन्यू हो जाएगा या फिर एक्सटेंड हो जाएगा आपको मिल जाएगा, बहुत बड़ी आसानी की बात। हमारे वहां सबसे ज्यादा खुश इस बात से आफरीन होगी, मतलब आफरीन कहना अक्सर ऐसा होता है कि उसके गेस्ट उसके रिश्तेदार आते रहते हैं तो वो बस हर बार चक्कर लगा रहे थे एक्सटेंशन कराने जा रही हूं अब बैठे बैठे काम हो जाएगा। चलो जी, ये बधाई वाली बात तो है सर कि अब हमारे अभी जो रिलेटिव आ रहा है अगर ज्यादा दिन रोकना है तो रोक पाएंगे और सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कुनाफा खिलवाओ इस खबर पे तो कोई हमें मिर्ची छोटी।

0: Need to send money home? Make it fast, make it safe. Make it Al Fardhan Exchange.
1: Your trusted choice for sending money, foreign currency exchange and gold bars and coins. Visit our nearest branch or download the Al Fardhan Exchange app now. For assistance, call or WhatsApp 4453-7777.
2: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
3: बस 24 घंटे ही रहेंगी
4: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
5: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
8: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

यार कितने लोग हिम्मत कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता, मैं तो नहीं कर सकता ये हिम्मत। सोचिए कैसा हो कोई आपसे कहे कि तुम सामने वाले के जाकर खड़े जाओ और वो सिर्फ तुम्हें देखकर बता दे कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तो नहीं खड़ा हो पाऊंगा, मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरा दिमाग कोई पढ़ ले। लेकिन अगर आप ये डेयर लेने को तैयार हैं तो अपनी टिकट्स बुक करा लो। दी मेंटली सुहानी शाह कमिंग टू कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम, जहां पर QNCC में 25th ऑफ सितंबर को होने वाला है दी मेंटली सुहानी शाह का ये लाइव शो, जहां पर आप इस न्यू एज मजिशियन को, जो इल्यूजनिस्ट है, जो माइंड रीड कर आपको बता सकती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उनको देखने का मौका मिलेगा। इसी उम्मीद में कि आपने अपनी टिकट्स बुक करा ली, क्योंकि टिकट्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग प्लेटफॉर्म, लेकिन SCT

मुंह पर आपके लिए फायदा है। सुहानी शाह लाइव इन कतर स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर प्रेजेंटेड बाय आईपे की इस वक्त की जो टिकट है वो मिल रही है आपको अर्ली बर्ड ऑफर के तहत, लेकिन एस सिटी स्नूनू पर ये बकायदा आपको 30 कतरे रियाल कैशबैक के साथ मिल रही है। यानी कि जो भी बुक करेगा किसी भी कैटेगरी टिकट 30 कतरे रियाल तो उसके पर्स में वापस आ जाएंगे और फिर वो उसको यूज कर पाएगा आने वाले टाइम में। इस उम्मीद में कि आपकी बचत मैंने करा दी आपको ये बात बताकर, अपनी टिकट्स बुक कर लो। एंड मस्ट फॉलो करो, इतना ही कहना है कि बहुत हिम्मती हो, अगर सुहानी के सामने खड़े होने की हिम्मत है तो बहुत हिम्मती हो। मैं तो नहीं भैया, मैं अपने दिमाग को किसी को नहीं पढ़ने देना चाहता। मिर्ची इट्स हॉट 89.6 89.6 मिर्ची।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
2: दाल चावल और अचार ना हो आम का, हाँ पानी आ गई। स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की जरूरत है। मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची। यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की।
1: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: The show was absolutely amazing.
4: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

ब्रदर्स अरिजीत सिंह अनजान मिलकर गा दिया दीवाना सोनू निगम का रिक्रिएशन, आनंद आ गया। सुनाया किसने? दीवाना तो मैं भी हूँ खाने पीने का। हाँ जी, कुछ अच्छा आइटम दिख जाए तो बार बार बार बार खा के दीवानगी को दूर कर देता हूँ। एंड पहली से 7-8 तारीख तक तो ऐसी दीवानगी में ज्यादातर फूड स्टॉल्स पे दिखाता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे अपने खर्चे को सिमटाता हूँ। लेकिन अगर आपके पास पैसे भर भर के हैं तो घर भेजो ना। राइट नाउ एक कतरे रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीस 25.89 25.89 रुपए भारतीय मुद्रा के। वहीं 1 कतरे रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीस 90.06। अगर हम बात करें तो आपको इस वक्त पाकिस्तान रुपीस के जनाब वाहिद कतरे रियाल के बदले मिलेंगे 76.12 पाकिस्तानी रुपीस। तपाई को नेपाली रुपीस का रेट चद आजो 1 कतरे रियाल के बदले आईपी ऐप पर 41.33 को नेपाली रुपीस का रेट चद आई। हाजी आजो 41.33 को नेपाली रुपीस का रेट चे। अगर इसके बाद हम बांधू बांग्लादेशी टाका की बात करके दादा 33.67 तो अगेंस्ट 1 कतरे रियाल 1 टाका के बदले 33.67 बांग्लादेशी टाका का रेट। मस्त मौला गौरव करेगा एक अभी इम्पोर्टेंट बात। हाँ जी, अगर आपको कतर में अपने फ्रेंड को पेमेंट देनी है या फिर किसी घर वाले को आप निकल गए हो और पेमेंट भेजना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आई पे ही वॉलेट पे आप पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर करो एकदम मिनिमम फीस पर। ये सब कुछ आपको मिल जाता है एक ही ऐप के जरिए, नाम है आई पे। डाउनलोड कर लो और मिर्ची को थैंक यू कह दो जो याद दिलाती रहती है मिर्ची।

0: एंड जब मस्त पूरा गौरव आपके साथ है तो आवारागर्दी बिल्कुल नहीं होती सर, गानों के साथ मस्ती होती है। 6:04
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: हाँ जी, इन सब के बीच मस्त पूरा गौरव इम्पोर्टेंट बातें लेकर आया और उन्ही बातों में से एक बात जो सामने आई है वो है कतर सेंट्रल बैंक की अगली मुहिम जो गल्फ पेमेंट सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है।
2: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, हम आपको बताना चाहते हैं कि कतर की ये जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि कतर अब AFAQ पेमेंट सिस्टम का हिस्सा बन गया है। ये गल्फ पेमेंट कंपनी जो है वो उसे चलाती है एंड बहुत सिंपल सी बात है कि अब सेंट्रल बैंक्स ऑफ ऑल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज इन द सिस्टम ये एक साथ आ गए और इनके फाइनेंशियल जो टाइज है वो और स्ट्रेंथनिंग हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ मॉनिटरी इंटीग्रेशन जो है वो GCC स्टेट्स के विद इन और ईजी हो जाएगा एंड ऐसे में 3 कतरी कमर्शियल बैंक्स नेमली दोहा बैंक, कतर इंटरनेशनल इस्लामिक बैंक एंड दुखन बैंक ये भी अब AFAQ सिस्टम का हिस्सा बन गए एंड दिस विल मेक देम अमंग द फर्स्ट कमर्शियल बैंक्स इन कतर टू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक की अगर बात करें अक्रॉस GCC नेशंस इट इज 74। तो भाई गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जितने भी लोग हैं उनके लिए ये और सिस्टम इजी होता जाएगा, यानी कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आप GCC कंट्रीज के विद इन पेमेंट सिस्टम विल बी मच मोर इजियर एंड मोर ट्रस्टेड एंड उससे भी बड़ी बात सब कुछ डिजिटलाइज, मतलब यहाँ बैठे बैठे आपकी दुबई की डील को भी आप पेमेंट कर पा रहे हो और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वेल, ये एक शुरुआत है और जिस तरह से कतर तेजी से आगे बढ़ रहा है हमें वो दिन दूर नहीं लग रहा जब GCC का एक यूनिफाइड वीजा भी आएगा और हम इधर से उधर आराम से जा आ पाएंगे। 89.6 मिर्ची वाले थॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Murga. Na vjetë vala murga. Mirci, murga. Murga.
1: हेलो
2: हेलो बेटा नवनीत,
1: आप कौन?
2: पापा कहाँ हैं?
1: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
2: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है उसे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
1: लेकिन आपको काम क्या है?
2: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
1: पापा ने कहा था?
2: चुप कर। पापा ने कहा था मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
1: क्या हुआ अंकल?
2: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
1: अब मुझे क्यों डांट?
2: चुप कर।
1: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
2: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा था तूने?
1: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
2: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
1: लेकिन बुरी क्या लगी?
2: अंकले कल भी आखो एक मारूंगा।
1: बदतमीजी क्या करी
2: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
1: कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
2: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
1: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
2: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
1: क्या बोलूं?
3: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
1: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
2: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: भाई अब सॉफ्ट ड्रिंक्स को लेकर जो मीठी वाली है ना उनके लिए थोड़ा सा मामला पेचीदा होगा। यस, हमारे कतर में जनरल टैक्स अथॉरिटी ने अनाउंस कर दिया नवंबर 1 से सर्टिफिकेट रिक्वायर होगा अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं किसी भी तरह की स्वीट एंड ड्रिंक तो।
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, हम आपको बताना चाहेंगे कि मान लीजिए आप इन्वेस्टर हैं और आपने स्वीट एंड ड्रिंक्स का कोई बिजनेस खोलने की सोची है तो उसके लिए आपको धरीबा प्लेटफॉर्म पे जाना है जहां पर रजिस्टर करना होगा, फिर आपका सर्टिफिकेट एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद ही आपकी ड्रिंक्स को वैल्यू मिल जाएगी। हाँ जी, क्योंकि ये सब कुछ होगा धरीबा प्लेटफॉर्म के बाद उन लेबोरेटरीज में जो कि एक्रेडिटेड है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर्ड है एंड विदाउट द नीड टू अटैच देम मैनुअली, यानी कि मैनुअली अब होगा ही नहीं मामला। आप यहां डालेंगे, आपकी कंपनी का सैंपल जाएगा, अगर सैंपल ठीक रहा जो भी एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज है वहां जाके, तो बस आपके शुगर और स्वीटनर्स को सही तरीके से जांच करके उनकी क्वांटिटी के हिसाब से उन पर टैक्स लगाया जाएगा। क्योंकि याद है ना पिछले दिनों कतर में ये क्लियर था, जितनी ज्यादा मीठी होगी ये ड्रिंक्स उतने ज्यादा टैक्स के बोझ तले ही आएगी। और अच्छी बात है भाई, आफ्टर ऑल जब हमारी और आपकी हेल्थ के लिए ये पूरा काम किया जा रहा है तो आई एम श्योर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम श्योर अब ये प्रोसेस को और इजी बना दिया गया है धरीबा प्लेटफॉर्म के जरिए। बस मोलो गौरव इतना ही कहेगा, बहुत डेस्परेशन होती है ना तो अपने पुराने टाइम के कुछ मीठी चीजों को भी आप ट्राई कर सकते हो। हाँ जी, लस्सी वस्सी बिल्कुल सेफ रहती, नींबू पानी भी सेफ रहता है, लेकिन अगर ये वाला पीना है तो थोड़ा टैक्स तो देना है। 89.6 मिर्ची वाली चॉट।

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में

इसे किसने बनाया। यार इतना दिमाग तेज है ना इस लड़की का। अरे बात करो ना दी मेंटलिस्ट सुवानिशा लाइव इन कतर फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, धीरे धीरे तारीख पास आ रही है। बस यूं कह लें आज से 18वें दिन सुहानी हमारे कतर में होंगी। हम में से किसी एक का दिमाग पड़ रही होंगी और हमारा दिमाग एकदम से चकरा जाएगा दोस्तों, क्योंकि सुहानी शाह पहली बार हमारे कतर आ रही हैं। एंड दिस इज ब्रॉट यू बाय कतर कैलेंडर एंड प्रेजेंटेड बाय आईपे, जहां पर मैं कह रहा हूँ ये एक ऐसी शाम है कि दिमाग तो खुल जाएंगे, हम दिमाग के गोते खाएंगे और हमारा दिमाग सिर्फ यही सोचेगा कैसे कर पाती है ये। वेल, लेकिन इस चीज को फील करने के लिए ना यू हैव टू बी रियली वेरी क्लोज, और उसके लिए आपको QNCC की टिकट्स बुक करनी है। 25th ऑफ सितंबर द लाइव शो ऑफ मेंटलिस्ट सुहानी शाह इज ऑल सेट। आपको बस गो एंड बुक योर टिकट्स, ऑल लीडिंग प्लेटफॉर्म्स यू विल फाइंड आवर टिकट्स। और सबसे खास बात, अभी भी अर्ली बर्ड ऑफर कंटिन्यू कर रहा है। एक बार आखिरी दिनों की तरफ पहुंचोगे ना टिकट महंगी हो जाएंगी। फिर मत बोलना यार गौरव कोई जुगाड़ बताओ, यार जुगाड़ बता रहे अभी से। SCT सुनू पर 30 कतरे रियाल का कैशबैक एंड बाकी जगहों पर अर्ली बर्ड ऑफर, आप यूज कीजिए इस मौके का, फुल टू फायदा उठाइए और अपनी टिकट बुक कर लीजिए। एंड बस इतना ही कहूंगा, दिमाग ना अपना थोड़ा सा कंट्रोल में रखना, जो भी आप सोचोगे इसे पता लग जाता है। 89.6 मिर्ची वाली।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शंकर महादेवन,
3: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग. तो हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
4: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, टू पुट दिस सनस्क्रीन, नॉट सनस्क्रीन द वन व्हिच यू यूज फॉर द स्पॉटिंग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट सनस्क्रीन थिंग इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी.
2: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
1: Bollywood. Only on Mirchi, it's hot.
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
7: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

हाँ जी आ गया हूँ मैं, इम्पोर्टेंट बात बताने। तो यानी कि अभी हमारी किडनी से कोई टेंशन नहीं होनी है जी, किडनी विडनी सब ठीक रहेगी, क्योंकि कहा यही जा रहा है 9 सितंबर को होने वाले एनुअल इवेंट में, जहां पर आप एप्पल के फोन के बारे में सोचते हो, इस बार जो 18वां नंबर है वो शायद लॉन्च नहीं होगा। हालांकि इस बार 3 प्रीमियम डिवाइसेस आने के चांसेस हैं, हाँ जी, जिसमें 18 प्रो के साथ साथ मैक्स वाला मामला जो है वो शायद फोल्डेबल आईफोन के रूप में पेश करने की उम्मीद की जा रही है, हाँ जी। और तो और कहा यही जा रहा है इस बार बेस मॉडल ही 256 मेमोरी चिप के साथ आएगा, यानी कि 128 वाला कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। वेल 9th of September पूरी दुनिया एक जगह टकटकी गड़ाए रहती है, लेकिन इस बार नए सीईओ जॉन टर्न्स की टर्न है कि वो अपना पहली बार की नोट पेश करेंगे। सबसे एक खास बात यही है कि इनकी लीडरशिप में क्या खास होने वाला है ये अब देखने को मिलेगा। 1st of September टिम कुक ने टाटा बाय कह दिया, अब इनकी जगह हार्डवेयर इंजीनियर थे और अब फाइनली सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से सीधे नए सीईओ का पदभार संभाला है। ऐसे में यही सोच रहा हूँ कि वाकई में बड़ा भार होगा यार, मतलब यहाँ सीईओ बने और 8 दिन के अंदर ही इवेंट आ गया। अब ये कहेंगे अच्छा है तो हमारा, बुरा है तो पिछले वाले ने थोड़ी गलती कर दी। मस्त वाला गौरव आपके साथ 89.6 मिर्ची 1, परसों पता लग जाएगा कि किडनी कितनी तैयार रखनी है। मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
0: मैं मार दूंगा यार, बहुत गुस्सा आता है, रोज कोई ऑफिस में मेरी चेहरा बदल देता है, क्या करूं?
1: सिंपल है, बॉस की गोदी में बैठ जा, प्रमोशन भी मिलेगा।

0: खाने पीने से लेकर पहनने तक का अपना एक शौक है पूरे गल्फ नेशंस में, लेकिन एक और शौक है, वो है फैल्कनरी का। उसके बारे में बात करते हैं 7:04।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वैसे अगर पूरे गल्फ की बात करें तो अलग अलग तरह के शौक सामने आते हैं, गाड़ियां महंगी लेने से लेकर नंबर प्लेट उससे भी ज्यादा महंगी तक, या फिर किसी भी तरह के नए तरह की बातों को कर ले जो करते हैं एकदम किंग साइज करते हैं। लेकिन यहां पर एक और शौक बहुत बड़ा है, वो है अपने फैल्कनरी का। एंड 10th कतारा इंटरनेशनल हंटिंग एंड फैल्कनरी एग्जीबिशन, जिसको हम प्यार से साहिल बोलते हैं, वो लौट रहा है कल से हमारे कतार में। Yes, हम आपको बता दें कतर के अलावा सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, पोलैंड, फ्रांस, तुर्की, लेबनान, यूनाइटेड किंगडम एंड पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, पोर्चुगल, स्पेन, रशिया, ये सारे के सारे यहां पर एक होकर आ रहे हैं और एग्जिबिट करेंगे फैल्कनरी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट, फैल्कन्स एंड 155 एंटिटीज एंड कंपनीज जो है इस दौरान यहां पर अपनी चीजें शोकेस करने आ रही है। और फैल्कनरी की दुनिया में क्या खास है, इसको अगर आप समझना चाहते हैं, यहाँ के इस कल्चर को समझना चाहते हैं, नेशनल बर्ड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट एग्जीबिशन यू शुड बी हियर। साहिल 2026 कतारा में होता है एंड कतर के कल्चर को समझने का, हेरिटेज को समझने का ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। अगर आप नए नवेले हैं तो आपको तो जरूर जाना चाहिए एंड हम भी कोशिश करेंगे दुनिया के कुछ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फैल्कन्स को जाकर देखेंगे, जिनके ऊपर मोटा खर्चा होता है, उनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेकर उनके ब्यूटिशियन भी अलग होते हैं। 89.6 मिर्ची वन सा

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Gabana. Burka, burka. Na vidba la burka. Milci, burka.
1: Hello?
2: Hello? Hello?
1: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही आवाज।
2: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
1: हाँ जी।
2: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
1: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज करेगी यार।
2: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर रमेश, इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले ही।
1: मैं
2: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी, इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
1: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
2: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
1: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
2: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
1: तू चोरी करने ले गया,
2: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
1: यहाँ पे ड्रिल मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा, मुझे फंसवाएगा।
2: बात सुन,
1: तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया।
2: बात सुन।
1: हेलो
2: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
3: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
1: कहाँ से बोल रहे भैया?
3: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
2: अब ठीक है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
5: it's back.
6: The show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

अगर आप ये कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से दुनिया के आयरन मैन मेरे लिए आप ही हैं। अरे यार, मैं बात कर रहा हूँ उस वर्ल्ड ट्रायथलन चैंपियनशिप की जो एक बार फिर से लगातार दूसरे साल हमारे कतर में होने जा रही है। यस, कतर T100 ट्रायथलन वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल दिसंबर 10 टू 12 हमारे कतर में होने जा रहा है। कह सकते हैं एक दमदार स्पोर्टिंग इवेंट जो दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स को हमारे यहां कतर में लेकर आता है। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल हमारे कतर में होगा और कतर T100 ट्रायथलन के लिए इस बार एक बड़ा सरप्राइज है। यस, सरप्राइज ये है कि हम और आप भी अब अपनी टीम बनाकर 100 किलोमीटर या स्प्रिंट डिस्टेंस में कम्पीट कर सकते हैं। और अगर बात करें तो इसका बड़ा ही सिंपल हिसाब किताब है। पहले 2 किलोमीटर की स्विमिंग करनी होगी इन अरेबियन गल्फ, उसके बाद 80 किलोमीटर की आपको साइकिलिंग करनी होगी एंड लास्ट 18 किलोमीटर रन करकर लुसेल प्लाजा बॉलवर्ड में आपको फिनिश करना होगा। कुल मिलाकर दुनिया भर से 5000 से भी ज्यादा एथलीट लास्ट टाइम आए थे। इस बार क्या होने जा रहा है, इंतजार कीजिए। वैसे हम कहते हैं ये तो T100 ट्रायथलन है, लेकिन अगर खाने पीने की 3 कोर्स की कोई रेस हो तो बताइए, हम उसमें इतना जबरदस्त तरीके से खाएंगे पिएंगे कि टॉप 5 में तो हम आ ही जाएंगे और क्या पता सिल्वर या ब्रॉन्ज भी आ जाए। नहीं, इतना भी नहीं खा सकते कि गोल्ड जीत पाए। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

चाय में जितनी चीनी चाय उतनी मीठी, लेकिन स्वीटेंड ड्रिंक्स में जितना स्वीटनर उतना टैक्स। 89.6 मेरे जीवन पर मस्त मौला गौरव आपके साथ है। पिछले दिनों हमने सुना था कि जल्द ही यह सिस्टम आएगा जहां पर स्वीटेंड ड्रिंक्स में जितना स्वीटनर होगा उसके हिसाब से ही उस पर टैक्स लगेगा। और अब जनरल टैक्स अथॉरिटी ने अनाउंस कर दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर 2026 स्वीटेंड ड्रिंक्स की रजिस्ट्रेशन और लैब एनालिसिस सर्टिफिकेट्स का अप्रूवल फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक होगा। यस, अब धरिबा प्लेटफॉर्म के जरिए डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ अप्रूव्ड लैब्स के साथ इंटीग्रेशन होगा। टैक्स पेयर एप्लीकेशन सबमिट करके एक्रेडिटेड लैब में सैंपल भेजेंगे, वहां पर टेस्टिंग के बाद लैब सर्टिफिकेट्स ऑटोमेटिक धरिबा प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे इन कंपनीज को अब मैनुअल रिपोर्ट्स अटैच करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हाँ जी, लेकिन ड्रिंक्स में शुगर और स्वीटनर्स की क्वांटिटी के हिसाब से एक्साइज टैक्स डिसाइड हो जाएगा। और फिर मार्केट डिलीवरी होते ही लोग कहेंगे, अरे यार ये तो पहले इतनी पीती थी इसका दाम बढ़ गया, तो समझ जाना कि उसमें ज्यादा चीनी थी इसलिए दाम बढ़ गया। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट 89.6 89.6 It's hot.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: इंडियन एक्टर्स में से अक्षय कुमार इज द प्रैंकस्टर ऑन सेट। अगर सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल से पूछते हैं।
3: उदित नारायण आई वुड से यू नो ही वाज मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर देन अ सिंगर बट अ वेरी लवेबल प्रैंकस्टर एंड ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड पासिंग सम कमेंट्स मेकिंग एवरीबॉडी लाफ।
2: ये थी अनुराधा पौडवाल टॉकिंग अबाउट द वन द ओनली सर सर सर सर उदित नारायण ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

अच्छा, धुन का संगीत से भी लेना देना है, धुन का इंसान की फितरत से भी लेना देना है। जैसे बचपन में जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मुझे बॉलिंग करने की इतनी आदत थी कि मैं शीशे के आगे खड़े होकर ना 20 बार अपने हाथ वैसे घुमा रहा हूँ, अलग अलग बॉलर्स की एक्टिंग कर रहा हूँ। तो मम्मी बोलती थी इसके अंदर बॉलिंग का धुन लगा हुआ है। फिर किसी और चीज़ के लिए कर लो तो बोलती थी इसको तो धुन सवार हो गई है। फिर हमें पता लगा धुन मतलब वो संगीत की भी धुन होती है। कुल मिलाकर ना अलग अलग जगहों पर किसी एक शब्द का अलग अलग मतलब भी होता है। एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंसान को भी ना ऐसे ही करना चाहिए। भले ही हम एक पर्सनैलिटी है लेकिन हमारा अलग अलग जगहों पर अलग अलग रोल और रूप होना ही चाहिए। आप एकदम कभी कभी स्टबन जब बन जाते हैं कि नहीं भाई हम ऐसे ही हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि शायद लोग आपको उस तरह से वहां पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा बदलाव लाने में कोई बुराई नहीं है। ये सब ज्ञान देने में कितना अच्छा लगता है ना। लोग हमें ही कहते हैं अमा यार गौरव तुम चुप ही नहीं होते, बोलते रहते हो। इंसान के अंदर देखिए कुछ चीजें हैं जो वो नहीं बदल सकता, लेकिन सही जगहों पर उसको राइट तरीके से इम्पोज कर अपने लिए थोड़ी इज्जत जरूर कमा सकता है। ऐसी बुद्धिमता भरी बातें अगर सुननी हो तो आज तो खत्म हो गई। कल शाम फिर से 4 बजे शाम शानदार में मस्त मौला गौरव होगा। एंड मेंटल वाला एक जबरदस्त झटका देखना है तो वो आप मेंटल सुहानी शाह लाइव इन कतर के साथ देखिए, जहां पर आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो इस बेहतरीन शो के लिए, जहां पर ये माइंड रीड करेगी, अपने इल्यूजन से लोगों को एकदम फंसा डालेंगी। आपको लगेगा ये हकीकत है पर वो इनका ट्रिक है। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा 25th of September QNCC सुहानी शाह लाइव इन कतर, ब्रॉट यू बाय यस कतर कैलेंडर, प्रेजेंटेड बाय आईपे। जितनी जल्दी हो सके सारे प्लेटफॉर्म पे जाओ, अपनी टिकट्स बुक कर लो। एंड SCT सुनो पे 30 कतरे रियाल का कैशबैक मिल रहा है, पैसे बचा लो। 89.6 मिर्ची 1 से मिसिंग टर्न बाय मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: मेरे बेटे का वेकेशन है और मैं उसे कब से पूछ रहा हूँ कि उसे क्या करना है। स्विमिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस जैसे ऑप्शंस भी दिए उसे, पर वो जवाब ही नहीं दे रहा, क्या करूँ?
1: अरे सिंपल है ना, तू स्विमिंग वगैरह छोड़ दे, उसे पहले जवाब देना सिखा, समझे?
2: I'm joking.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. इट्स हॉट.
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.
4: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: द शो स्टार्ट्स इन.
6: बॉलीवुड को समझना है तो एक बात मान लीजिए, अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है. जिस फिल्म को इंडस्ट्री सेफ समझती है, ऑडियंस उसे इग्नोर कर देती है, और जिस फिल्म को देखकर पहला रिएक्शन आता है कि भाई ये क्या बनाई है, कभी कभी वही थिएटर्स में हंगामा कर देती है. Whether it's a Dhurandhar 2, Awarapan 2, Toxic ya phir Hewan. And then of course you got the Dhamals, the Cocktails and the Welcome to the Jungles. Matlab audience ek ajeeb si demand kar rahi hai. Surprise bhi chahiye aur entertainment bhi chahiye. Bas ek cheez nahi chahiye. Predictability. Shayad Bollywood ki sabse interesting baat aaj yahi hai. Industry future ki taraf bhaag rahi hai. Lekin audience kabhi kabhi use पास्ट की तरफ खींच लाती है. जैसे आज शान की आवाज, सैफ अली खान लगभग 2 दशक बाद, और हैवान से ही इस बार का काउंटडाउन होता है किक स्टार्ट. दिस इज गाना नंबर 20. मेरे हीरो हैं वो.
7: नंबर 20.
8: लेके जन्म पहला पहला कदम, जब चलते हैं हम उंगली थामे कोई.
9: लिख रहे हो ना?
8: तुम भी गाओ.

जब कोई गाना खत्म होता है हम तुरंत उस टाइम पर कुछ बोलते नहीं, बस 2-3 सेकंड्स की वो खामोशी होती है। ना लिरिक्स की कोई एक लाइन दिमाग में अटकी होती है, ना म्यूजिक का कोई पर्टिकुलर पीस, बस आवाज अंदर कहीं रुक गई होती है। तो फिर आओ, मेरे लिए उन्हीं गानों में से एक है। और शायद म्यूजिक की सबसे खूबसूरत बात भी यही है, हर कनेक्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं होता। इसलिए आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, म्यूजिक हटाने वाला हूं, प्रोडक्शन हटाने वाला हूं, सिर्फ आवाज आप तक पहुंचाना चाहता हूं।

बस अभी जो सुना उसमें अरेंजमेंट नहीं है, फिर भी आवाज पहचान में आ जाती है। आवाज है अरमान मलिक की। एक वक्त था जब रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए बॉलीवुड की सबसे इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल यंग आवाजों में अरमान का नाम आता था, और फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में अपनी अलग दुनिया बनाई। और शायद इसलिए नंबर 18 पर आता हुआ ये ब्रांड न्यू गाना सिर्फ एक नई एंट्री नहीं लगती, कभी कभी कमबैक अनाउंसमेंट से नहीं होता, बस आवाज दोबारा सुनाई देती है। और आप खुद समझ जाते हैं, प्रेम कीटाणु से अरमान मलिक इज बैक विद अ सॉन्ग कॉल्ड कहो तो, एंड डेब्यूज ऑन नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: हेलो
2: कौन?
3: हेलो
2: हाँ बोलो कौन?
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ, आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोल कौन रहा है?
3: बोल कौन रहे हो? कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की, नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
2: बोल कौन रहे हो?
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोला था।
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार, आप लोग खाते क्या हो, कितना गहरा कर दिया आपने।
2: पूछ के घुसे थे क्या अंदर?
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
2: हाँ बोलो।
3: ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर। ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार, आप लोग खाते क्या हो, कितना गहरा कर दिया आपने।
2: कौन बोल रहा है, कहाँ घुस गए यार?
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ, आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ हाँ बोला था, हुआ क्या है कुछ तो बताओ।
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर।
2: कब आया था, कब घुसा अंदर?
3: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
2: तो कहाँ से रहा है, तो नहीं हो गया है?
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
3: ऑफिस क्यों गए, सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
2: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और के सीवर में घुस गया?
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
2: सीवर में मरा रहा है तू,
3: गाली तो मत दो।
2: हेलो
3: हेलो,
2: फिर फोन कर दिया तूने?
3: अच्छा है, सीवर साफ होने का काम करो, एक चीज बोलो।
2: क्या बोलो?
3: कुकड़ू को
4: सर आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया।
2: कुकड़ू को
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो, एक ऐसा शो जहां पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snoo. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
8: नंबर 17।

मदहोश नाम ही ऐसा है कि वॉल्यूम बढ़ाने से पहले ही दुनिया थोड़ी धीमी पड़ जाती है और ये एक कॉम्प्लीमेंट है और यही कॉम्प्लीमेंट बहुत सारे सिंगर्स को भी दिया जा सकता है। और वैसी एक सिंगर है जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ, नाम है मोहम्मद इरफान। यार इरफान की आवाज में हमेशा से एक अजीब क्वालिटी थी, वो आवाज आपको इम्प्रेस करने नहीं आती थी, वो सीधा मूड बदल देती थी। फिर मोहब्बत याद है आपको, कितनी बातें की हैं मैंने इस गाने की इस शो पर। सॉन्ग वाज संग बाय थ्री सिंगर्स, अरिजीत सिंह, सायम भट्ट एंड मोहम्मद इरफान। तीन आवाजें एक गाना, अरिजीत एक दास्तान बन गए। इरफान की आवाज दास्तान बनने से पहले ही जैसे खामोश हो गई, लेकिन आवाज कहीं नहीं गई।

0: कुछ होता है यार दिल में, क्या आवाज है, और शायद दर्द यही है। कभी कभी टैलेंट का खत्म होना प्रॉब्लम नहीं होता, बस उसके पास पहुंचने वाले वो मौके खत्म हो जाते हैं। इस हफ्ते धमाल 4 का कहर संग बाय गुरु रंधावा नंबर 16 पर है। क्योंकि हम इरफान की बातें कर रहे थे, कुछ गाने वक्त के साथ पुराने नहीं होते, वो बस आप ही का एक पुराना वर्जन वापस ले आते हैं। इरफान के लिए वो वक्त था एक विलन का। मिथुन ने तुम ही हो के बाद एक नई आवाज को चुना और बंजारा में मोहम्मद इरफान वो आवाज बन गए। द सॉन्ग फ्रॉम एक विलन इज माई रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक।
1: टॉप 20 रिवाइंड।
2: जिस

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 5.

कुछ फ्रेंचाइजेस को रीबूट करने की जरूरत होती है और कुछ को अपना असली चेहरा याद दिलाने की। There's a film called Race, जिसे आप नहीं भूले और मैं भी नहीं भूला, लेकिन रेस शायद उस दूसरी कैटेगरी में आती है, क्योंकि पहली दो फिल्म्स में गाड़ियां तेज थी, लोग उससे भी ज्यादा तेज थे, लेकिन असली मजा स्पीड का नहीं था, मजा था इंफॉर्मेशन का। आपको कुछ पता है और कैरेक्टर को कुछ और ही पता है, और हर 10 मिनट में फिल्म आपको सडनली बताती थी कि जो आप समझ रहे थे वो बिल्कुल गलत था। एंड देन आई सलमान खान की रेस 3। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ डायरेक्शन या कास्टिंग की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि रेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो कहीं रास्ते में ही छूट गया, एंड दैट वाज ऑडियंस को डाउट में रखना। अब रेस 4 की बात हो रही है, रीबूट की बात हो रही है, और कास्टिंग पॉसिबिलिटीज काफी इंटरेस्टिंग है। देयर कुड बी आमिर खान, देयर कुड बी टाइगर श्रॉफ, देयर कुड बी सिद्धार्थ मल्होत्रा, विच ऑल्सो मीन्स कि स्केल हो सकता है, एक्शन हो सकता है, बड़े स्टार्स हो सकते हैं। लेकिन असली सवाल अब भी एक ही है, क्या ये रेस होगी या रेस के नाम से एक और एक्शन फिल्म होगी? क्योंकि रेस का मैजिक तभी वापस आएगा जब फिल्म खत्म होने के बाद आप भी सोचेंगे कौन किस पर भारी पड़ा। वेल, लेट मी लीव यू विद दैट थॉट एंड ऑल्सो लीव यू विद माई स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग ऑफ द वीक, विच हैपेंस टू बी फ्रॉम द फिल्म दैट वी टॉकिंग अबाउट, बेनी दयाल और शालमली खोलगड़े की आवाज में। दिस इज लत लग गई। स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकते हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकते हैं?
4: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ। गाना रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए।
5: दिल ने कहा चुपके से ये क्या हुआ, चुपके से

0: चुपके से ये क्या हुआ चुपके से।
1: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। नंबर 2।

महीनों से जिस गाने ने इस काउंटडाउन पर अपना बसेरा बनाया हुआ था, आज उसके सामने वक्त ने एक बार फिर एक नया फैसला लिखा है। कैरा हुआ इज ऑन नंबर टू, लेकिन नंबर वन की कहानी सिर्फ एक चार्ट पोजीशन की नहीं है यार। एक पुराना गाना वापस आता है और हमें लगता है कि हम गाना सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम अपनी पुरानी जिंदगी सुन रहे हैं। तेरा मेरा रिश्ता उन्हीं गानों में से है। 19 साल पहले पहली बार सुना था, लेकिन फिर हम बदले, शहर बदले, लोग बदले, जिंदगी ने अपना साउंडट्रैक बदला, लेकिन वो धुन कहीं नहीं गई। और जब आवारापन 2 ने उसे दोबारा हमारे सामने रखा, तो हमने सिर्फ एक पुराना गाना नहीं सुना, हमने देखा कि उस गाने के अंदर हमारा कौन सा वर्जन अभी भी दबा हुआ था, अभी भी जिंदा था। तेरा मेरा रिश्ता ने आवारापन को सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं दिया, उसने फिल्म को एक मेमोरी दी है। और आज वही मेमोरी महीनों पुराने नंबर वन सॉन्ग गहरा हुआ को उसकी जगह से उतार रहा है। इस हफ्ते का नंबर वन सॉन्ग तेरा मेरा रिश्ता कुछ धुने वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बस हम उनमें खुद का एक नया हिस्सा ढूंढ लेते हैं।

0: कुछ गाने हम चूज करते हैं और कुछ गाने पता नहीं कब हमें चूज कर लेते हैं, फिर वो किसी सफर का हिस्सा बन जाते हैं, किसी याद का, किसी ऐसे वक्त का जिसे हम दोबारा जीना भी नहीं चाहते और पूरी तरह भूलना भी नहीं चाहते। शायद इसलिए हम हर हफ्ते यहां लौटते हैं। That's it for this episode of the Mirchi Top 20. Until the next time we meet, this is Suren, over and out.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: Hello? Mirchi Helpline?
3: Yes, of course. Mirchi Helpline, bataiye.
2: हेलो सर, मेरी फोटो में ना कभी भी स्माइल अच्छी नहीं आती।
3: oh, no.
2: क्या करूं?
3: बेबी डॉल, स्माइल फोटो में नहीं होटो पे अच्छी लगती है।
4: साले को खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले।

ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: खिलवाड़ है जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है और इंसान ये माल जिसका खाता है प्यार जिसके पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है।
0: माल जिसका खाता है प्यार जिसके पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ हेलो हेलो वेलकम। आज ना उस जमाने की एक ऐसी फिल्म ढूंढ करके मैं लाई हूँ जो एक्चुअली में पॉपुलर बहुत है, लेकिन अपने एक्टर की वजह से, अपने स्टार एक्टर अमिताभ बच्चन की वजह से। बट बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि इस वेरी पॉपुलर फिल्म एंड अ ह्यूज हिट फिल्म की जो कहानी थी वो एक्चुअली में जया बच्चन जी ने लिखी थी, जिसके बाद उस कहानी को फिर से इम्प्रूव किया था टीनू आनंद के फादर ने, यानी इंदर राज आनंद जी ने। ये कौन सी फिल्म थी? अच्छा चलो, ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखती हूँ हर दिन की तरह। ये फिल्म थी शहंशाह। इस फिल्म को लिखने वाली, सबसे पहले इसका जो स्क्रैच था, इसकी जो कहानी थी, इसकी जो स्क्रिप्ट थी, वो लिखने वाली जया बच्चन थी। और उन्होंने ये स्क्रिप्ट, ये कहानी दिखाई थी इंदर राज आनंद को। उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा मैं इस पे फिल्म बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस फिल्म की कहानी को थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ेगा। तो जया बच्चन ने उनको वो लिखी हुई कहानी दी और फिर तो वी नो हाउ द मैजिक वर्क्ड। पुरानी जींस में ना आज शहंशाह की बातें करेंगे। आओ गप्पे मारते, कम राइट बैक विद मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: हेलो
3: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
2: थैंक यू
3: अतुल। वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
2: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा।
3: हाँ, नहीं वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो,
2: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
3: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
2: मतलब ये गेम है क्या ये?
3: आओ मिलो शिलो शालो,
2: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
3: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह।
2: आओ मिलो
3: शिलो शालो,
2: शालो
3: कच्चा
2: धागा,
3: रेस
2: लगा लो
3: 10 पत्ते तोड़े,
2: 10 पत्ते तोड़े,
3: 1 पत्ता कच्चा,
2: 1 पत्ता कच्चा।
3: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा आप तेज से बोलेंगे, 10 पत्ते तोड़े
2: तोड़े
3: या मिस्टर श्रीवास्तव 10 पत्ते तोड़े, 10 पत्ते तोड़े,
2: 10 पत्ते तोड़े,
3: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा।
2: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा।
3: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू,
2: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू,
3: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को।
3: मिस्टर श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
2: यार ये कोई सुनेगा
3: सर? ये सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
5: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो, एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoo. Tickets available in all leading ticketing platforms.
0: Aap sun rahe hain Purani Jeans श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस फिल्म में कभी भी अमिताभ बच्चन होने ही नहीं थे। एक्चुअली में तो इस फिल्म के शहंशाह होने वाले थे जैकी श्रॉफ, और कहते हैं उन्होंने साइनिंग अमाउंट भी ले लिया था। यहाँ तक कि जैकी श्रॉफ के लिए एकदम उनके कॉस्ट्यूम्स भी बन गए थे फॉर द फिल्म, और उन्होंने रिहर्सल्स भी शुरू कर दिए थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अमिताभ बच्चन को ये फिल्म करनी पड़ी? वेल, अमिताभ बच्चन उस टाइम पे पॉलिटिक्स में एंटर कर चुके थे, एंड उनको रियलाइज हो गया था कि पॉलिटिक्स उनके बस की चीज नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ा और यू टर्न मारा बॉलीवुड की तरफ, तो सबसे पहली जो फिल्म उनको ऑफर हुई, दैट वाज शहंशाह। एंड ये जो फिल्म थी, ये उनकी वाइफ जया बच्चन ने लिखी थी, जिसको आगे रिफाइन किया था इंद्रराज आनंद ने। वेल, आगे क्या क्या हुआ इस फिल्म की बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। डिम्पल कपाटिया के साथ क्या हुआ था? यस यस यस, यू डिड नॉट सी हर इन द फिल्म, लेकिन डिम्पल कपाटिया थी। कब, कैसे, कहां, सब बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये बहुत खास फिल्म है जिसके बारे में आज बात हो रही है, क्योंकि इसकी स्टोरी, इसकी कहानी लिखने वाली थी जया बच्चन और इसमें एक्टिंग करने वाले थे उनके हस्बैंड अमिताभ बच्चन। पुरानी जीन्स में आप और श्रेया के साथ, और द आइकॉनिक फिल्म दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे इज शहंशाह। तो मैं बता रही थी कि इस फिल्म में आपने मीनाक्षी शेषाद्री को देखा होगा प्लेइंग द लीड हीरोइन वाला कैरेक्टर, बट एक्चुअली में ये वाला रोल पहले डिम्पल कपाटिया को गया था। फिर क्या हुआ, तीनों आनंद को लगा कि डिम्पल कपाडिया और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री लोग देख करके खुश नहीं होंगे, सो ही वॉन्टेड टू ट्राई अ न्यू कमर, और इसलिए उन्होंने मीनाक्षी शेषाद्री से बात की और उनको साइन कर लिया। ये तब हुआ जब डिम्पल कपाडिया को उनके साइनिंग अमाउंट फॉर द फिल्म भी मिल चुका था, एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद अमिताभ बच्चन। डिम्पल कपाडिया का कहना है कि वो हमेशा से चाहती थी कि वो बच्चन साहब के साथ एक ना एक फिल्म जरूर करें, एंड दिस फिल्म एक्चुअली वॉज गोइंग टू मेक हर ड्रीम कम ट्रू, पर ऐसा हुआ नहीं। और फिर ना उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स में इंटरव्यूज चले, फिल्म मैगजीन्स में इंटरव्यूज चले, एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी। क्या थी उसको पूरी बताऊंगी, पूरी कहानी उसकी, आई विल लेट यू नो कुछ गानों के उस पर। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: कुमार शानू, आपके हिसाब से आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे?
4: मेरे कॉलिग के बारे में मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, मैं ना बोलना चाहता हूँ। हमारे जो कॉलिग्स थे, दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स, अलग अलग अपना पहचान बनाया, जो आज के सिंगरों में है नहीं, पहचान है नहीं किसी का। एक ही टाइप का सिंगर आपको 6 मिल जाएगा।
3: वेयर इज द लाई कुमार शानू, वेयर इज द लाई? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

डिम्पल कपाड़िया इस फिल्म के लिए अपना साइनिंग अमाउंट बिल्कुल वापस नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर टीनू आनंद ने उनको ट्रिक किया, उनके साथ थोड़ी सी चालाकी की। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द आइकॉनिक फिल्म शहंशाह। तो इसमें बच्चन साहब हैं और इसमें मीनाक्षी शेषाद्री हैं। सो मीनाक्षी शेषाद्री वाले रोल के लिए टीनू आनंद ने साइन किया था डिम्पल कपाड़िया को, उनको ना उनके साइनिंग अमाउंट भी दे दिया था। लेकिन फिर टीनू आनंद को लगा कि बच्चन साहब पॉलिटिक्स को बाय बाय कह करके बॉलीवुड की फिल्में करने बहुत टाइम के बाद आ रहे थे, तो ऐसे में लोग कोई नया चेहरा देखना चाहेंगे अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट। तो उन्होंने फिर मीनाक्षी शेषाद्री को साइन कर लिया। आप भाई इस बात से काफ़ी ओफेंड हुई डिम्पल, उन्होंने कहा कि मैं साइनिंग अमाउंट वापस नहीं करूंगी, क्योंकि टीनू आनंद बार बार उनसे उनका साइनिंग अमाउंट वापस मांग रहे थे। शी सेड कि आई एम नॉट द वन हु इज वॉकिंग आउट ऑफ द फिल्म, आपने अपना डिसीजन चेंज किया है तो मैं क्यों पैसे वापस करूं। और ये कंट्रोवर्सी उस टाइम के न्यूज़पेपर्स ने जम करके छापी थी, फिल्म मैगजीन्स ने जम करके छापी थी। फिर टीनू आनंद ने उनसे कहा कि अगर वो साइनिंग अमाउंट वापस दे देंगी तो वो दो बैक टू बैक फिल्में उनके साथ अनाउंस करेंगे अलोंग विथ अमिताभ बच्चन। वेल, डिम्पल कपाड़िया के लिए बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफर था, बिकॉज शी ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विद अमिताभ बच्चन। क्या उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट किया, यस और नो, बताऊंगी कुछ गानों के इस पर। मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो, आप मिर्ची हेल्पलाइन?
2: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
1: इतनी गर्मी है यार, उसमें एसी नहीं चल रहा। लैंडलॉर्ड को कितनी बार बोला, रिपेयर ही नहीं करवाता, क्या करूं?
2: एसी नहीं चल रहा तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा? सिंपल है, एयर लॉर्ड को बोलो एयर लॉर्ड, ठीक है?
3: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: हुई मॉडल पूरा ना लगता है।
1: ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती।
2: दो फिल्में अनाउंस तो हुई लेकिन वो कभी भी बनी नहीं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, शायद ये तरीका था टीनू आनंद का डिंपल कपाड़िया को ट्रिक करने का। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया एंड शहनशाह फिल्म की बात हो रही है जिसपे अमिताभ बच्चन थे। इस फिल्म की स्टोरी, इस फिल्म की कहानी लिखने वाली थी जया बच्चन जी। अमिताभ बच्चन एक अरसे के बाद इंडस्ट्री में वापस आ रहे थे, पॉलिटिक्स उन्होंने तब ज्वाइन कर लिया था और इसीलिए वो फिल्में कर नहीं रहे थे। बट फाइनली पॉलिटिक्स को टाटा बाय बाय कह करके यू टर्न मार करके फिल्में करने जब वो वापस आए तो शहनशाह वॉज द फर्स्ट फिल्म जिसका ऑफर उन्हें मिला था। अब ऐसे में डिम्पल कपाटिया के पास ऑलरेडी ऑफर जा चुका था, उनके पास साइनिंग अमाउंट जा चुका था टू प्ले द लीड इन दिस कैरेक्टर, एज इन टू प्ले द लीड फीमेल। फिर क्या हुआ, मीनाक्षी शेषाद्री को रातों रात उनके जगह पे रिप्लेस किया गया। अब टीनू आनंद जो ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे वो चाहते थे कि डिंपल कपाटिया अपना साइनिंग अमाउंट वापस दे, लेकिन डिंपल कपाटिया का कहना था कि मैं तो फिल्म छोड़ के नहीं जा रही हूँ, आपने मुझे रिप्लेस किया तो मैं क्यों वापस करूं। ये कंट्रोवर्सी उस टाइम की फिल्म मैगजीन्स ने जम करके छापी थी। सो टीनू आनंद ने एक कंडीशन रखी, ही सेड कि अगर वो उनका साइनिंग अमाउंट वापस कर देंगी तो वो अगले ही दिन अमिताभ बच्चन के साथ दो और फिल्में विद डिंपल कपाटिया अनाउंस करेंगे। अब डिंपल ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद बच्चन साहब, उनके लिए इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर था कि उन्होंने हाँ कहा, पैसे वापस दिए और अगले दिन टीनू आनंद ने दो फिल्में अनाउंस भी करी। ये जो दो फिल्में थी उनका नाम था महाकाल और एक का नाम था आलीशान, पर ये दोनों फिल्में कभी बनी नहीं। इसीलिए डिंपल ऑलवेज फेल्ट कि टीनू आनंद ने चीटिंग की, जो कि एक्चुअली में की। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
3: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

घमासान आर्ग्यूमेंट हुआ अमिताभ बच्चन और टीनू आनंद के बीच में। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज जिस आइकॉनिक फिल्म की गप्पे मार रहे हैं हम लोग वो है शहंशाह। सो इस फिल्म को लिखने वाली थी जया बच्चन जी, फिल्म को और रिफाइन इसकी स्टोरी करने वाले थे इंद्रराज आनंद, उन्हीं के बेटे टीनू आनंद ने फिल्म को डायरेक्ट किया था, एंड ऑफकोर्स मूवी के स्टार अमिताभ बच्चन। सो होता ये है कि अमिताभ बच्चन को एक सीन के लिए ब्लेजर पहनना था, लेकिन टीनू आनंद चाहते थे कि इस सीन के लिए भी वो पुलिस इंस्पेक्टर एज इन पुलिस यूनिफॉर्म पहने। लेकिन बच्चन साहब ने कहा कि भाई 80% ऑफ द टाइम मैं सिर्फ यूनिफॉर्म पहना हूँ, मुझे ब्लेजर पहनना है। और टीनू आनंद भी एकदम अड़ गए थे कि नहीं, आप होंगे बच्चन साहब, लेकिन आपको डायरेक्टर की बात माननी है, मैं चाहता हूँ कि आप यूनिफॉर्म में ही रहें। ये बात बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो गई कि अमिताभ बच्चन गुस्से में अपने चेंजिंग रूम में चले गए और वहां पर उन्होंने अपने आप को 3 घंटे के लिए बंद रखा। टीनू आनंद को लगा कि लो भाई ये तो पिक्चर जो है ना आगे बनेगी ही नहीं, तो वो अमिताभ बच्चन के पास गए। फिर क्या बच्चन साहब ये करने के लिए माने, राजी हुए? ये तो सस्पेंस है, ये मैं कुछ गानों के उस पार बताऊंगी। सो कम राइट बैक फॉर द फुल स्टोरी। मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

टीनू आनंद और बच्चन साहब की इस आर्ग्यूमेंट के बीच में टीनू आनंद के फादर इंदर राज आनंद को बीच में आना पड़ा। पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ उस जमाने के गानों के साथ आज गप्पे कौन सी आइकॉनिक फिल्म की?

बच्चन साहब ने कहा कि 80% ऑफ द फिल्म में वो बच्चन साहब जो थे ना वो यूनिफॉर्म ही पहने थे, एंड ही सेड कि उनका ऑडियंस चाहता था कि वो उन्हें नॉर्मल कपड़ों में भी देखे. लेकिन टीनू आनंद जो थे वो मान ही नहीं रहे थे. बच्चन साहब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जाकर के अपने आप को ड्रेसिंग रूम में बंद कर लिया फॉर 3 आवर्स. 3 घंटे के बाद टीनू आनंद ने दरवाजा खटखटाया. उन्होंने बच्चन साहब को समझाने की कोशिश करी लेकिन बच्चन साहब मान ही नहीं रहे थे. तो फिर अमिताभ बच्चन ने कहा कि वो इंदर राज आनंद, टीनू आनंद के फादर से बात करना चाहते हैं. इंदर राज आनंद एकदम स्टूडियो पहुंचे और उन्होंने सारा मामला जो है वो समझ में आया. फिर उन्होंने अमिताभ बच्चन से पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि अमित, एक कोने में सैफरन ग्रीन और वाइट कपड़ा पड़ा है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर इन तीनों कपड़ों को एक साथ स्टिच कर दो तो वो हमारा झंडा बन जाता है. एक ऐसी चीज जिसके लिए कोई भी जान दे सकता है और जान ले भी सकता है. एंड दैट इज द पावर ऑफ आर फ्लैग. एंड द सेम पावर हमारी यूनिफॉर्म की होती है, पुलिस की यूनिफॉर्म की होती है. ये बात सुनते ही अमिताभ बच्चन को समझ में आ गया कि सीन की डिमांड थी कि वो ऑफिसर्स यूनिफॉर्म में रहें. उन्होंने बिना कुछ कहे टीनू आनंद की बात मानी और पुलिस की यूनिफॉर्म पहन ली. पुरानी जीन्स पे ना उस जमाने की बहुत सारे बातें होती हैं मेरे पास, पिटारा है इनफैक्ट पूरा. एक एक करके सब शेयर करूंगी. कम राइट बैक.

इस फिल्म से एडवांस बुकिंग शुरू हुई थी। इससे पहले तक किसी को नहीं पता था कि मूवी के रिलीज से पहले आप मूवी के टिकट्स बुक कर सकते हो। पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ और आज बात हो रही है शहंशाह मूवी की। सो हुआ ये कि इस फिल्म को करने से पहले बच्चन साहब ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी और वो ऑफकोर्स मूवी से एकदम गायब हो गए थे। ये पहली फिल्म उनकी रिलीज होने वाली थी जो उन्होंने एक अरसे के बाद पॉलिटिक्स को छोड़ करके करी थी। यू नो व्हाट हैपेंड कि एडवांस बुकिंग ऑफ अ फिल्म दैट हैड नेवर हैपेंड बिफोर इन हिस्ट्री दैट स्टार्टेड विद शहंशाह। दो हफ्ते पहले द रिलीज ऑफ द फिल्म सारी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी थी और जिन्होंने ब्लैक में टिकट्स बेची वो उस समय लखपति बन गए। पुरानी जीन्स में इसी फिल्म की बातें। वेल, मैं हूँ श्रेया। इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी, कुछ कहना है, कुछ शिकायत करनी है, तो फेसबुक और इंस्टा पे माय हैंडल इज RJ श्रेया विद लव। दैट्स RJ SHREYA विद लव।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताऊं सर, बहुत दुविधा है, समझ नहीं आ रहा प्यार चूज करूं या करियर।
1: अरे सिंपल है रे, तुम ना वो चूज करो जिससे तुम्हारा खर्चा निकले।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

आनंद को लगा कि ये भीड़ पासपोर्ट ऑफिस की है। पुरानी जीन्स में आप और श्रेया के साथ, और आज बात हो रही है, गप्पे मार रहे हम लोग मूवी शहंशाह की। ये पहली फिल्म टू बी रिलीज थी जब बच्चन साहब ने पॉलिटिक्स को टाटा बाय बाय किया और वापस यू एंट्री मारी इंडियन सिनेमा की तरफ। सो तब तक ना बच्चन साहब बीच में काफी गायब थे, कुछ सालों तक गायब थे व्हेन ही वाज इन्वॉल्वड इन पॉलिटिक्स। सो टीनू आनंद की जो फिल्म थी शहंशाह, ये पहली फिल्म थी टू बी रिलीज जब बच्चन साहब वापस आ गए। अब हुआ ये कि टीनू आनंद ना एक दिन वर्ली से निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि पासपोर्ट ऑफिस के आगे भयंकर भीड़ है, बहुत सारा क्राउड है। ही थॉट कि शायद सब लोग पासपोर्ट ऑफिस गए, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि हर कोई गैदर हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम थिएटर जो मुंबई का था पासपोर्ट ऑफिस के पास, भाई शहंशाह के टिकट्स खरीदने। लोगों का तो यहां तक कहना है कि भाई इतना ज्यादा क्राउड आ जाता था कि भयानक पुलिस फोर्स को लगाया गया था एंड एक दो हवाई फायरिंग भी हुई थी टू कंट्रोल द क्राउड। वाओ, पुरानी जीन्स पे ना इस फिल्म की बहुत सारी गप्पे मिलके मारेंगे मैं और आप। कम राइट बैक, मैं हूं श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बच्चन साहब, अगर उन्हें लग जाए कि कैरेक्टर को इस चीज की डिमांड है, तो फिर वो किसी का कहा नहीं मानते थे, वो चीज करते थे और बहुत ग्रेसफुली विदाउट कंप्लेनिंग। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज शहनशाह फिल्म की बातें चल रही हैं। सो अमिताभ बच्चन उस समय बीमार भी थे, ही वॉज इन फिजिकली वेरी वेरी फिट जब वो ये फिल्म शहनशाह कर रहे थे, और ऐसे में उनका जो जो मेटल का आर्म था, अगर आप शहनशाह फिल्म देखो तो जो वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं उसमें जो मेटल का आर्म था ना, वो 14 किलो का था, और पूरी जो यूनिफॉर्म थी उसको मिलाकर के 28 किलो का वजन, जो कि एक्चुअली में डॉक्टर्स ने उन्हें मना किया था पहनने के लिए, लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन ने ये कॉस्ट्यूम 28 किलो की पहन करके पूरी फिल्म की शूटिंग की। वाह। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, और भी बातें हैं सब शेयर करूंगी, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहां पर मैं आपके माइंड रीड करती हूं, आपको इन्फ्लुएंस करती हूं। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

टीनू आनंद के फादर इंदरराज आनंद ने इस मूवी का क्लाइमैक्स अपने डेथ बेड पे लिखा था, पुरानी जीन्स पे, आप और श्रेया के साथ, और शहनशाह फिल्म की बात हो रही है। तो इस मूवी की जो स्क्रिप्ट थी वो लिखने वाले थे टीनू आनंद के फादर इंदरराज आनंद जी। मूवी का क्लाइमैक्स बस बाकी था जब उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। मूवी खत्म होने के 27 दिन पहले वो हॉस्पिटलाइज हो गए और उन्हें ऐसा फील आ गया था कि शायद वो ठीक ना हो पाए। उन्होंने अपने बेटे टीनू आनंद के चेहरे पे दो चिंताएं देखी, एक अपने फादर के लिए और दूसरा मूवी कंप्लीट हो जाने के बावजूद इनकम्प्लीट रह जाने के लिए। तो उन्होंने एक पेपर उठाया, एक पेन मांगा और अपने बेड से ही मूवी का क्लाइमैक्स लिख दिया। एंड ही डाइड द सेम डे। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, शहनशाह फिल्म की बातें चल रही हैं, तो बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: शंकर महादेवन,
4: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग, तो हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
5: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, to put this sunscreen, it's not sunscreen, the one which you use for the sporting thing, it's very important to put that sunscreen thing is what my wife told me.
3: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, इट्स टाइम फॉर मी टू गो, बट ऐसे कहाँ जाते हो, हाईवे पे आपको लेके जाऊंगी। वेल, आज का मेरा हाईवे हिट उन लोगों पे है जो चाहते हैं कि उनकी जाना जो है वो थोड़ी देर और रुक जाए, उनसे दो बातें और करके जाए, लेकिन जाना तो घर वापस जाना चाहती है और वो ज़्यादा दिखाना भी नहीं चाहती है लोगों को कि वो आपसे मिलने आई थी, लेकिन आप चाहते हैं कि दो से और चार बातें हो जाएं। तो भाई आपके लिए गाना, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। इफ यू वॉन्ट टू स्पीक विद मी ऐसे वन टू वन तो फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माई हैंडल। ऑन दैट नोट, गुड नाइट।

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

गाना हॉट है। ये था गुची, संग बाय अरूप खान फीचरिंग रियाज अली, कंपोज्ड बाय प्रीतिंदर, लिरिक्स बाय कप्तान एंड म्यूजिक बाय मिक्सिंग। फुल ऑन मिर्ची बैंगर, इट्स हॉट। 89.6, 89.6, it's hot.